0: is because Rahul Gandhi was not raised in the Indian culture. He was raised in a foreign culture, therefore he's unable to grasp the Indian tradition and the Indian culture and the importance of it. Let's listen in to Nitin Abid.
1: मैं राहुल मियां से कहता हूं मित्रों कि राहुल जी आप वंदे मातरम का महत्व समझ ही नहीं सकते क्योंकि आपने कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के महत्व को ही नहीं समझा आपको तो विदेशी संस्कृति में ही पले बड़े हैं वंदे मातरम का पूरा गान करने से आपकी माता श्री और आपका पार्टी अपमानित महसूस करता है इस कांग्रेस को तो निश्चित रूप से हमें समाप्त कर देना चाहिए मित्रों
0: We have Kishore Rawat, my colleague, joining us. Kishore, all this was said in Haldwani. Talk us through, you know, the comments that have been made by Nitin Abid saying that the party should be dismantled because they don't respect the Vande Mataram song.
2: बिल्कुल नितिन नवीन हल्द्वानी में दो दिन के दौरे पे पहुंचे थे और बीजेपी की कार्य समिति चल रही है इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता उनको संबोधित करते हुए मन से सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी को कहा कि मैं राहुल गांधी को मियां कहता हूं यानी उनका जो पूरा फोकस था हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण का मामला था उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी पर मुकदमा भी दर्ज हुआ उसके बाद उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ यानी फिलहाल अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है तो जो पूरा एपिसोड था ये शुद्धिकरण का मामला और दलितों के से जुड़े मामले को होते हुए उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को मियां शब्द कहा और कहा कि वंदे मातरम का जो पूरा गान है उसे गाने में कांग्रेस अपमानित महसूस करती है इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया लेकिन ये कहा कि राहुल गांधी और उनकी माताश्री जो वंदे मातरम है उस गान को गाने में अपमानित महसूस करती है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में भी चुनाव है इसके अलावा चार अन्य राज्यों में भी चुनाव है तो पूरा फोकस उनका चुनाव को लेकर था लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मंच से सीधे तौर पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशान साधा तो उनका साफ मकसद है कि जो दलितों वाला मुद्दा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे जिस तरीके से लगातार मुकदमों की बात हो रही थी दिल्ली या फिर कई राज्यों में उसको लेकर राहुल गांधी पर सीधे तौर पर उन्होंने वंदे मातरम गान को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस समाज में दो भागों में बांट रही है यानी दलित समाज और दूसरा समाज बांटने का काम कर रही है इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एकमात्र बीजेपी ही है जो इन चीज़ों को ठीक कर सकती है यानी देश में विकास करती है राज्यों में विकास कर सकती है यही वजह है कि सीधे तौर पर उनका जो निशाना था वो राहुल गांधी पर था राहुल गांधी को उन्होंने मियाँ शब्द कहकर पुकारा बोला जी
0: Right, Kishore, thank you so much for getting us the very latest as to what Nitin Abid has said while attacking the leader of opposition. Moving on now is the Congress that's upping the ante and this is against the BJP. We have Digvijay Singh announcing Sanatan Swabhiman Yatra. This is announcing the Ujjain Ayodhya Padyatra as well and the Yogi government protecting Champat Rai is the allegation that's being made by the Congress leader Digvijay Singh recalling the Ram Shila campaign back in 1988. Do remember the Congress's focus. Is Chanda Chori saying it's a serious area of concern amongst people of the country as it's associated with the sentiments of the people and those who use Ram Mandir for polarizing people now stand exposed and which is why they wanted to take that issue to the ground root level and also to the panchayat level.
3: वैचारिक रूप से मैं विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का विरोधी हूं लेकिन जब भगवान श्री राम का विषय सामने आ गया तो मैं भी उसका एक अंग बना लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने और संघ ने और भाजपा ने चंदे का दुरुपयोग किया हमारे आस्था के बिंदु को हमारे चढ़ोतरी को आपने लूट लिया इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इन सब बातों को लेकर ही मैंने तय किया है कि दशहरा 20 अक्टूबर 2026 को मैंने सनातन स्वाभिमान यात्रा करने का तय किया है
0: Tejshree, my colleague joining us in order to get us details. Tejshree, of course, this is as per planned by the Congress party wanting to take the issue of Chanda Chori to the grassroots level, directing, all in the Congress party to take it up at the villages, at panchayat level as well. And that is something we're seeing with this Padyatra that's been announced by Digvijay Singh.

0: NDTV Network.
1: Hey Kia, navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
2: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
3: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
4: Kia. Movement that inspires.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: राजा प्योर मसाला।
8: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
9: देश का टायर जेके टायर।
10: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर, जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाह मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia, movement that inspires.
2: Hindustan mile, Hindustan se.
3: देश का टायर, जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्थर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: Offices have been pasted and of course the entire area has been vacated and cordoned off, and the authorities now will also be checking all these buildings. However, these six buildings which are already highlighted by the authorities, they will also be demolished, keeping in mind the safety concerns of the students. And also very important development as far as today 10 September is concerned, because the hearing is also set to take place in the Supreme Court today, because Supreme Court has stated that this is definitely a very serious issue, and they have something in their mind, is what Justice Amanullah has said. Now needs to be seen that what kind of strategy or plan or orders will the Supreme Court will be giving as far as these kind of PGs and hostels are concerned. Because see, not only in the national capital, but there have been such kind of incidents across India. So that is why now needs to be seen that what kind of structural framework comes out as far as the Supreme Court is concerned. Will the Supreme Court be issuing some kind of guidelines or precautionary measures or some more stringent rules or some stringent action to be taken? So all eyes on the hearing as well. And of course, all these actions that are being taken by the MCD, we are getting you all the ground updates.
1: Right, Tejri, thank you for getting us the details from Ground Zero, getting us updates as to the demolition drive that has now entered day two. This is across Delhi, the MCD identifying and intensifying its crackdown when it comes to illegal construction and dangerous buildings. The civic body is carrying out that demolition action against 34 properties, like we mentioned. They have sealed 17 others, and this is across different zones of the national capital. The MCD has issued 22 show cause notices, passed 4 demolition orders. The enforcement drive targets buildings found violating Delhi's master plan and building bylaws, and authorities stepping up action against structurally unsafe properties across the national capital. The probe basically is intensified after the owner, this is the owner's son Mahesh, the labour contractor Sanoj and the PG operator Sudhanshu were sent to 2 days of police custody. Investigators say a ground floor wall was removed for the making of a shop. That is to make way for a shop potentially that had weakened the structure. 3 truckloads of debris was also dumped inside the basement. The Supreme Court today is taking up the matter, including the police seeking the safety audits of private hostels, of PGs, along with possible pan-India safety rules as well. Let's just also get you, when we bring you this exclusive interview with Nitish Achib, a survivor of the Satyaniketan building collapse, recently discharged from the AIIMS Trauma Center. My colleague Soumya brings you his story.
2: नितीश जी, जब ये इंसिडेंट हुआ था वो लास्ट वन आई नो कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था वो सिचुएशन, उसको याद भी करना बार बार, बट वो लास्ट के कुछ मोमेंट्स आप अगर बता सको कि क्या आपने उस टाइम पे नोटिस किया, कि आप लोगों को रियलाइज हुआ, अगर आप वो कुछ शेयर कर सको तो.
3: मैम, सुबह खाना खा के बस बैठे ही थे रूम में, तो बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई, तो नीचे दबे रह गए 1.5 घंटा तक.
2: आपको हेल्प कितने देर में मिली और किसने हेल्प किया, आप कैसे निकल पाए वहां से?
3: 1.5 घंटे के बाद सीनियर्स ने बताया टीम को कि यहाँ पे हमारे बच्चे फंसे हैं, फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू करना शुरू किया था.
2: आप में से किसी ने क्या, मतलब आप लोग के पास अगर फोन था, आप लोग में से किसी ने किसी को रीच आउट किया था कि आप यहाँ पे हो, स्टक हो?
3: मेरे दोस्त ने लोकेशन भेजी थी, फोन भी किए थे कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, फिर उन्होंने आगे टीम को बता के हमें निकाला वहां से.
2: जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपको कब तक क्या आप अपने सेंसेस में थे जब आपको हॉस्पिटल ले गया गया, वहां से आपका पूरा जो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाओ तो?
3: हम जब लेके गए हॉस्पिटल तब तो काफी ऐसे ही था, बॉडी पूरी सुन पड़ी थी, ना काम कर रही थी ना कुछ, सिर से ब्लड निकल रहा था काफी. तो थोड़ी देर के बाद होश आई, तब ठीक था, मैं थोड़ा गुड फील कर रहा था.
2: नितीश जी, इस पीजी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आपका अग्रीमेंट भी पढ़ा था कि उसमें ये लिखा गया था कि कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें पीजी ओनर जिम्मेदार नहीं है. वहां पे जो भी इलीगली चल रहा था, क्या आप लोग कभी भी इस चीज को ओनर से कंप्लेन किए या ये इश्यूज रेज किया आपने कि वो बच्चे भरे जा रहे थे वहां पर और वो बिल्डिंग काफी वीक हो चुकी थी, तो ये सब कभी आप लोग ने रेज कर पाए ओनर से?
3: मैम, हमें पता ही नहीं लगा कि बिल्डिंग गिर जाएगी या

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: coming up, whether it was the Padmavat controversy or the Jodha Akbar controversy, because, you know, somewhere the cultural identity is very strongly linked to history. And that's the reason why Rajasthan gives this kind of a social reaction, to put it in a context. But having said that, it's a BJP government. The Rajput votes are very, very important. We've seen one BJP leader writing to the censor board. We've seen another BJP leader who's from the Mewar dynasty tweeting about it and tagging the Ministry of Information and Broadcasting. So I think this is an issue that is really going to escalate. There's a social media storm on it, and it's something that's going to pick up. And of course, the singer, he's also gone on record to say that he's absolutely anguished by the way his song has been used.
1: Update. Thank you very much for joining in. Stay with us because we have Raparia Balam, Shurveer song singer, joining us live exclusively here on NDTV. Raparia Balam, bahut bahut dhanyawad hamare sath judne ke liye NDTV par. Aapse ek spasht sawal, aapka video humne dekha ki aapne kaha ki aap legal notice bhej rahe hain XL Entertainment ko aur keh rahe hain ki ye jo gana hai aapka hai aur aap bhi जो हैं बहुत ही क्रोधित हैं, गुस्से में हैं कि जिस तरीके से जो गाने का प्रदर्शन इस फिल्म में किया जा रहा है, कि क्या आपत्ति है आपको, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपका ये गाना है और किस तरीके से गाने का इस्तेमाल हुआ है, क्या आपत्ति है आपको?
2: जो लीगल सबसे पहले नमस्ते, खमागणी, राम राम आप सभी को. और देखिए, लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है, वो चीज़ें हम एक बार साइड कर देते हैं. और जो मेन जो है, देखिए, ये मेरा विरोध नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का विरोध है. इस तरह से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास हुआ है फिल्म में, वो निंदनीय है. और हमारी जो मुख्य जो हमने जो बात रखी है लगातार, ये भी कहते हैं कि ये इट्स नॉट ए चीप पब्लिसिटी स्टंट कि हम चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं. ये है हमारे अपमान की बात है, राजस्थान के अपमान की बात है. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं कि क्या ये जस्टिफिकेशन होगा, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम मंदिर में भजन सुनते हैं और वहाँ पर हम डीजे पे बार सॉन्ग्स चला के नाचें? ये नहीं होगा ना, ये सरासर गलत है. और इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, पूरा भारत इस चीज़ का विरोध कर रहा है. और जिस तरह से आम जन आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई है.
1: जी, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? और दूसरा, मैं ये भी स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूँ, अब जब आपने लीगल नोटिस भी भेजा है और आपकी जो आपत्ति है पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर जारी की है, क्या फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई फ़ोन कॉल, कोई चिट्ठी, कोई संपर्क आपसे हुआ, वो क्या कह रहे हैं?
2: जी नहीं, अभी तक हमारे को संपर्क नहीं किया गया है. और अब जो हमारी जो मुख्य बात है, जो आप देख रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह. और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया है और CBFC को लेटर के द्वारा उनको आगाह भी किया है कि इस तरह से ये चीज़ें हटाई जाएं. जिस तरह से गाने का प्रयोग हुआ है वो दुरुपयोग कहेंगे, और वो गाना वहाँ से हटना चाहिए क्योंकि ये सरासर इंसल्ट है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की.
1: जी बिल्कुल, आपकी बात हम जो हैं दर्शकों के सामने रख रहे हैं, ये इंटरव्यू लाइव चल रहा है NDTV पर, तो जो भी आपको कहना है आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं. मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस गाने का अगर थोड़ा इतिहास में हम जाएँ तो आप हमें बताएं, एक तो इसका जैसे प्रायोजन किया गया है फिल्म में, उससे बहुत बड़ी आपत्ति और ठेस पहुंची है लोगों को राजस्थान में, लेकिन इस गाने का इतिहास भी क्या आपका है, किस तरीके से आपने इस्तेमाल किया था, और क्या फिल्म से पहले कभी फिल्म मेकर्स ने आपको कॉन्टैक्ट किया, कहा कि इस गाने का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं?
2: जी नहीं, इस गाने की लाइसेंसिंग में जो राइट्स जो फिल्म को दिए गए हैं वो मेरी जानकारी, मेरी अनुमति के बिना हुए हैं, बिना परमिशन के हुए हैं. और मुझसे बिल्कुल भी संपर्क, कम्युनिकेशन, किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रखा गया, ये मेरी जानकारी के विपरीत हुआ है. और शूरवीर सीरीज़ के दूसरे गाने भी हम अलग अलग वीर योद्धाओं के, भारत के जो वीर योद्धा हैं जिन्होंने त्याग और बलिदान की लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस माटी के लिए, हमने हमेशा, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा सिंसियर

0: क्लियरिटी के साथ अच्छी से अच्छी जो हमारी वीर गाथाएं हैं वो आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहे, ये कहानियाँ, ये त्याग की अमर कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहे। भारत का बच्चा बच्चा का आदर्श जो है वो महाराणा प्रताप जी जैसे वीर योद्धा हों, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हों, छत्रपति शिवाजी महाराज को माने। बस
1: जी
0: यही हमारे प्रयास रहा है और हम ये प्रयास लगातार कर रहे हैं कि कैसे अपने मॉडर्न म्यूजिक के साथ हम इंटरेस्टिंग बना के जो हमारा जेंजी है उनके बीच हमारा म्यूजिक, हमारा कल्चर लेकर आएं। और इस चीज़ और जिस तरह से ये गाना यूज़ हुआ है, मैं अगेन वही बात अपनी रखता हूँ कि वो मिस यूज़ हुआ है इस गाने का, और ये एक पूरे भारतवर्ष का अपमान है, राजस्थान का अपमान है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का अपमान है।
1: जी बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि जो अपमान है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और तभी ये इंटरव्यू बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने राजेंद्र राठौड़ जी का इंटरव्यू भी किया, उन्होंने जो मीडिया को कहा वो बताया, लेकिन आपका जो हमने वीडियो देखा, मैं दर्शकों के लिए, क्योंकि आप जो हैं इस गाने के लाइसेंस होल्डर हैं, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं, जो आपने वो वीडियो बनाया अपनी ही बोली में, क्या वो थोड़ा बहुत आप रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर NDTV के दर्शकों के लिए, जिस तरीके से आपने अपनी बोली में वो वीडियो बनाया और बताया अपने अंदाज में, ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुँचे।
0: मेरी बात यही, देखिए देखिए गाना 2020 में ज़रूर रिलीज़ हुआ है और वो लोगों का हम सब का गाना है, वो मेरा अकेले का गाना नहीं है, वो हम सब उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, उसको चेरिश कर रहे हैं। आप देखिए कि चाहे कोई भी फंक्शन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, राजस्थान के स्कूल्स में कहीं पर भी कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो उस वो गाना हम सब का है, लोगों का है, लेकिन
1: जी
0: जिस तरह से वो मूवी में पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत दुखदाई है।
1: आप क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जाते जाते कुछ बोल उस गाने के,
0: और
1: बोल दें हमारे लिए?
0: मैं वार्निंग के साथ जो गाने में भी है, अगर आप गाना सुनेंगे कि
1: जी
0: नो इट्स नॉट ए गैंगस्टर सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग अबाउट ए वॉरियर, ले हाथ खड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संग चल कूच पड़ा, बन शूर वीर वो टूट पड़ा, ओ माटी में वाड़ारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावण दूंगा, आन तेरी तुझको ये जबान मेरी, तुझ पे वारूंगा जान मेरी, बली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी में वाड़ारी।
1: बहुत ही उमदा, बहुत ही ज़बरदस्त, और आपकी आवाज़, आपका गाना देश भर में गूंज रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि ये गाने का असली उद्देश्य आपका क्या था और फिल्म में कैसे दर्शाया गया है। तो आपकी आवाज़ जो है, आपने जो आज कहा है NDTV पर, वो लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो है रपरिया बालम NDTV के साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो और आखिरकार जो आपकी आवाज़ है वो देश भर में गूंजे। All right, there's more news that's coming in, and this is in regard to another murder that stuns Tamil Nadu. A shocking police angle emerges in the Chennai murder case. Hours before his death, Pradeep publicly alleged that a police inspector had threatened his life, warning him of a brutal violence. Pradeep claimed the inspector warned him of serious violence, including breaking his limbs and hacking him to death. The allegations have now triggered a sharp political attack from Udayanidhi Stalin, who demands accountability from the police. Taking direct aim at the government, he asks, do police think Vijay is a dummy? Let's listen in.
2: Inspector Gupta, inniki Gupta, nee na vandu ungalkulla motivation irukke, neenga mari mari vettipinga na enakku thagal varudhu, idhu mari solranga poranga varana ke sollumbodhu na ketan sari adana adukku aadhara adana sonnadhu iruka na pesna record adana iruka neenga engitta vandu sollunga kaatunga நான் வந்து அதை வந்து இது பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னும் போது, நீ என்ன பெரிய இதுவா சார், உயிரோடு இருந்த நான் பார்த்துடுறேன், நீ வந்து உன் கை காலை உடைச்சிருவேன், உன்னை சுட்டுடுவேன், உன்னை சுட்டு சாவடிச்சிருவேன், உன்னை வெட்டி திருச்செந்தூரில் திரும்ப போய் கரைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டேஷனில் இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் வந்து இது மாதிரி சொல்லி என்னை வந்து கொலை மிரட்டல்
3: விடுறேன். And within 2 days, this has happened in Tiruvathur, whereas that person has given a complaint in the police station stating that the inspector is trying to murder him. So very next day he has been murdered. And the chief minister in assembly says that the murder should not be seen as a law and order problem, because

0: And over the last 1 week, this has been a true big story. There are questions being raised, and now it is the day two of the demolition drive across Delhi. MCD intensifies its crackdown on the illegal construction and dangerous buildings all across the city. The city body carries out demolition action against 34 properties and seals 17 others across all 12 zones of Delhi. The MCD, which is the Municipal Corporation of Delhi, has issued 22 show cause notices and passed 4 demolition orders. The enforcement drive targets buildings found violating Delhi's master plan and building bylaws, with authorities stopping by for action against structurally unsafe properties across the capital. The probe intensifies with owner's son Mahesh, labor contractor Sanoj, and the PG operator, Sudhanshu, sent to 2-day police custody. The investigators say a ground floor wall was removed for a shop, potentially weakening the structure. 3 truckloads of debris were also dumped in the basement. The Supreme Court is also hearing the matter today, including a plea seeking safety audits of the private hostels and the PGs, along with possible Pan India safety measures.
1: It's day two of MCD and Delhi government's crackdown on illegal, unauthorized structures across the national capital. Right now, we're present here in Delhi's Lakshmi Nagar's D block. An entire 5-story building has been declared unauthorized by MCD officials and is being demolished. The entire 5-story building will get demolished. The family of the owner is saying that even though this was sealed, they're saying that it was the builder here to whom the owner had given this entire space. He's at fault here and not the owner and the family. You can see in the visuals behind me, police officials are overseeing this demolition process. This is in D block of Lakshmi Nagar. This is another spot. Yesterday, another demolition had taken place in Lakshmi Nagar's F block. This is D block. The entire five-story building will get demolished. It is being carried out in a phased manner. As of now, they started with the first and the second floor.
0: And staying with this story, the Satya Niketan disaster has led to a lot of lives being lost, but a lot of people have been injured as well. And now NDTV brings you an exclusive interview with Nitesh Chimp, a survivor of the Satya Niketan building collapse, who was discharged from the AIIMS Trauma Center in New Delhi. And our colleague and reporter Soumya brings us this big exclusive.
2: नितेश जी, जब ये इंसिडेंट हुआ था वो लास्ट मोमेंट, आई नो कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था वो सिचुएशन, उसको याद भी करना बार बार, बट वो लास्ट के कुछ मोमेंट्स आप अगर बता सको कि क्या आपने उस टाइम पे नोटिस किया, कि आप लोगों को रियलाइज हुआ, अगर आप वो कुछ शेयर कर सको तो.
3: मैम, सुबह खाना खा के बस बैठे ही थे रूम में, तो बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई, तो नीचे दबे रह गए 1.5 घंटा तक.
2: आपको हेल्प कितने देर में मिली और किसने हेल्प किया, आप कैसे निकल पाए वहां से?
3: 1.5 घंटे के बाद सीनियर्स ने बताया टीम को कि यहाँ पे हमारे बच्चे फंसे हैं, फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू करना शुरू किया था.
2: आप में से किसी ने क्या, मतलब आप लोग के पास अगर फोन था, आप लोग में से किसी ने किसी को रीच आउट किया था कि आप यहाँ पे हो, स्टक हो?
3: मेरे दोस्त ने लोकेशन भेजी थी, फोन भी किए थे कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, फिर उन्होंने आगे टीम को बता के हमें निकाला वहां से.
2: जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपको कब तक, क्या आप अपने सेंसेस में थे जब आपको हॉस्पिटल ले गया गया, वहां से आपका पूरा जो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाओ तो.
3: हम जब लेके गए हॉस्पिटल तब तो काफी ऐसे ही था, बॉडी पूरी सुन पड़ी थी, ना काम कर रही थी, ना कुछ, सिर से ब्लड निकल रहा था काफी. तो थोड़ी देर के बाद होश आई तब ठीक था, मैं गुड फील कर रहा था.
2: नितेश जी, इस पीजी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आपका अग्रीमेंट भी पढ़ा था कि उसमें ये लिखा गया था कि कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें पीजी ओनर जिम्मेदार नहीं है. वहां पे जो भी इलीगली चल रहा था, क्या आप लोग कभी भी इस चीज को ओनर से कंप्लेन किए या ये इश्यूज रेज किया आपने कि वो बच्चे भरे जा रहे थे वहां पर और वो बिल्डिंग काफी वीक हो चुकी थी, तो ये सब कभी आप लोग ने रेज कर पाए ओनर से?
3: ना, हमें पता ही नहीं लगा कि बिल्डिंग गिर जाएगी या इस सिचुएशन में आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग बाहर से तो पूरी ठीक ही लग रही थी, अंदर का इतना पता ही नहीं था कि कितने वाली है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: वर्णन आप मिर्ज़ापुर के अंदर हिंसक गैंगवार में करें, एआई का ज़माना है, क्रिएशन का ज़माना है, पर ये कोई आपको अनुमति नहीं देता कि आप ऐसे करैक्टर को ग्लोरीफाई करें महाराणा प्रताप के नाम से, जो फिल्में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करें, जिस जो एक तरह से अनैतिक कामों में लिप्त रहे, ये गुड्डू भैया, ये मुन्ना त्रिपाठी, इस प्रकार के करैक्टर के साथ राणा प्रताप को पीछे दिखाकर मैं समझता हूँ हमारे इतिहास को छोटा करने का काम कर रहे हैं।
1: जाफरिया बालम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एनडीटीवी पर। आपसे एक स्पष्ट सवाल, आपका वीडियो हमने देखा कि आपने कहा कि आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट को और कह रहे हैं कि ये जो गाना है आपका है, और आप भी जो हैं बहुत ही क्रोधित हैं, गुस्से में हैं कि जिस तरीके से जो गाने का प्रदर्शन इस फिल्म में किया जा रहा है, कि क्या आपत्ति है आपको, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपका ये गाना है और किस तरीके से गाने का इस्तेमाल हुआ है, क्या आपत्ति आपको?
2: जो लीगल सबसे पहले नमस्ते, खमागणी राम राम आप सभी को। और देखिए, लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है, वो चीज़ें हम एक बार साइड कर देते हैं। और जो मेन जो है, देखिए, ये मेरा विरोध नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का विरोध है। इस तरह से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास हुआ है फिल्म में, वो निंदनीय है। और हमारी जो मुख्य जो हमने जो बात रखी है लगातार, ये भी कहते हैं कि ये इट्स नॉट ए चीप पब्लिसिटी स्टंट कि हम चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये है हमारे अपमान की बात है, राजस्थान के अपमान की बात है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं कि क्या ये जस्टिफिकेशन होगा, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम मंदिर में भजन सुनते हैं और वहाँ पर हम डीजे पे बार सॉन्ग्स चला के नाचें? ये नहीं होगा ना, ये सरासर गलत है। और इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, पूरा भारत इस चीज़ का विरोध कर रहा है। और जिस तरह से आम जन आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई है
1: जी। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? और दूसरा, मैं ये भी स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूँ, अब जब आपने लीगल नोटिस भी भेजा है और आपकी जो आपत्ति है पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर जारी की है, क्या फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई फ़ोन कॉल, कोई चिट्ठी, कोई संपर्क आपसे हुआ, वो क्या कह रहे हैं?
2: जी नहीं, अभी तक हमारे को संपर्क नहीं किया गया है। और अब जो हमारी जो मुख्य बात है, जो आप देख रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह, और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया है और CBFC को लेटर के द्वारा उनको आगाह भी किया है कि इस तरह से ये चीज़ें हटाई जाएं। जिस तरह से गाने का प्रयोग हुआ है वो दुरुपयोग कहेंगे, और वो गाना वहाँ से हटना चाहिए क्योंकि ये सरासर इंसल्ट है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की।
3: And this is big NDTV campaign, Save the Babies. Over the last 2 days, it's been an outrage all across the country. The 5 orangutans who were rescued from the Pichitrapur forest in Odisha continue their stay at a zoo in Bhubaneswar. The orangutans underwent a vet examination and doctors said that all 5 are healthy. The state forest and environment minister said that the joint probe by the special task force and the wildlife control bureau would look into how the animals came to Balasore, who brought them there and to the forest, and who was involved in such activities. Meanwhile, the CCTV footage obtained from the area shows the vehicle passing through at around 11:25 p.m. and returning 15 minutes later. The footage is now being examined as part of the investigation into how the orangutans reached the forest. In fact, meanwhile, the Odisha Forest Minister, Ganesh Ram Singh Khutania, has spoken exclusively to NDTV on the latest developments. Let's listen in.
4: Mr. Ganesh Ram Singh Khutania, the Forest and Environment Minister of Odisha. Sir, welcome to NDTV. Sir, Mangalwar ko rescue kiya gaya Forest Department ki taraf se, aur unko fir Nandan

0: उनका नंजू को शिफ्ट किया गया। सर अभी कैसा केयर लिया जा रहा है उनका और क्या क्या स्पेशल बंदोबस्त हुआ है?
1: देखिए, शिफ्टेड होने के बाद हम लोग ये नंदनकानन में क्वारंटाइन में सब पांच जो थे हम लोग का उरांग उटन बेबिन को क्वारंटाइन में रखा गया है। उसके बाद हम लोग अभी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग का डिपार्टमेंट का डॉक्टर लोग लगे हुए हैं। कल भी बोला, हर न्यूज को मैं बोला ऑलरेडी। तो ये बहुत छोटे हैं, 1 ईयर का आसपास होंगे, इसलिए थोड़ा बहुत केयर ज़्यादातर लेना पड़ता है, अभी ले रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है ना, उसके साथ भी हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं। हम लोग का PCCA पे ऑलरेडी कम्युनिकेटेड किए हैं नेशनल जू अथॉरिटी को, इतना औरंग उटन पे भी रिस्क किए बोल के। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका तबीयत भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था, अभी डॉक्टर बोला ठीक है बोल के। तो आने वाला सीजन में उनको थोड़ा बहुत और अधिक से अधिक क्या लेना पड़ेगा, कहीं ना बेबी है, अभी दूध पिला रहे हैं डिपार्टमेंट। मेरे हिसाब से 1 साल से अधिक इनको दूध दूध तो ही देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं। तो अभी जहाँ तक कहाँ से आया, कौन लाया, इसके बारे में अगर बातचीत करेंगे, निश्चित रूप से ये हम लोग का ये इंडिया के स्पेसिस के उड़ीसा के स्पेसिस तो है ही नहीं, तो निश्चित रूप से ये लोग कहाँ से आए हैं इसके बारे में हम लोग का
0: सर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल वही सब अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि कैसे बालेश्वर पहुंचा, क्या एक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क काम कर रहा है, या सर ऐसे क्या क्या आपको क्या लग रहा है, आपका इन्वेस्टिगेशन में क्या अभी तक सामने आया है?
1: देखिए, अभी तो हम लोग क्लियरली बोल नहीं सकते हैं, अभी इंक्वायरी चल रहा है, WCCB इंक्वायरी कर रहा है, इसके साथ हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं। और आपका जो बालेश्वर के जो आपका एयरपोर्ट है, उसका साथ रेलवे है, मेराइन वे है, रोड ट्रांसपोर्ट है, और लोकल लोगों के साथ बातचीत चल रहा है, कैसे हैं, कौन लेके आया, ये स्पेसिस हम लोग का इंडिया में नहीं मिलते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डाउट है, ज़रूर ये बाहर से आए होंगे बोल के। तो ये स्पेसिस आप जानते होंगे, रेन फॉरेस्ट कंट्री है जो आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्निया, चाइना में मिलते हैं। तो अभी ये हम लोग के लिए अनन्य स्पेसिस है, और अभी उड़ीसा गवर्नमेंट का क्लोजली मॉनिटरिंग कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी फॉरेन टूर में है, आने के बाद हम लोग पूरा तदंत को और बढ़ा देंगे, जिससे हम लोग का यही कि स्पेसिस बाहर ना जाए, इसलिए हर डिपार्टमेंट को भी हम लोग को रिक्वेस्ट किए हैं, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट और कोस्ट गार्ड को भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, कैसे अधिक से अधिक निगरानी किया जाए, जैसे हम लोग का उड़ीसा के वाइल्ड एनिमल वाइल्ड स्पेसिस बाहर ना जाए।
2: Meanwhile, Odisha Special Task Force Inspector General Himanshu Lal speaks exclusively to NDTV about the investigation into the five baby orangutan found abandoned in a forest in Odisha. He says that the Special Task Force is working to identify the source, destination, and the possible interstate or international trafficking network behind the animals. The STF is also investigating whether more orangutans could be present in the area. Let's listen in to this exclusive conversation.
3: Joining me live tonight on NDTV is Himanshu Lal. He's IGP of the Special Task Force that is investigating the potential trafficking of these orangutan babies that were found abandoned in a forest in Odisha yesterday. Himanshu ji, welcome. Thank you for speaking to NDTV. My first question to you, sir, can you tell us what the condition of the baby orangutans is? We did see pictures from the institute where they are being cared for and taken care of right now. What is their condition right now, according to your information?
4: Their condition is good. They are in Nandan Zoo and they are well taken care of.
3: Where does the investigation go now, sir? Because obviously these baby orangutans are, are native of islands thousands of kilometers away. I think it is pretty clear that they have been trafficked. Anything you are picking up on how they got there?
4: See, we are working on the investigation. STF has taken the case and we are working that how they have come here, and we will try to get the whole network busted and we

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: गोल्ड रश ऑन द फील्ड
2: इंडियाज चैंपियंस आर रेडी
1: द बैटल्स एंड द ब्रेक थ्रूज फ्रॉम द अरीना टू द पोडियम
2: एशियन गेम्स 2026
1: गो फॉर ग्लोरी ओनली ऑन एनडीटीवी
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: वेलकम टू NDTV's Emerging Business Conclave 2026 Mumbai edition.
4: I believed that I am the right person to build my business. Because I believed that, then right. The rest of the obstacles you jump over.
5: MSME sectors ke liye bank log

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: A very good morning to you all at the NDTV Anviksha.
6: Nepalese women are incredible entrepreneurs, and I can see a lot of women entrepreneurs here, my friends.
7: Green energy is the talk of the world.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: रहा।
1: सरकार का जिस तरीके से इस पे पूरा रवैया रहा है, एमसीडी का रवैया रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि लापरवाही
0: नहीं,
1: हुई,
0: नहीं, नहीं, सर।
1: सबको पहले आपको पता होना चाहिए था
0: सरकार
1: किस
0: इसमें
1: तरीके।
0: कोई
1: जी
0: सरकार का इसमें कुछ भी नहीं है सर, सरकार कहीं कोई सहयोग नहीं करता। वहां हम पहुंचे, वहां हम अपने स्थिति में पहुंचे, वहां वहां हमको सिर्फ यही सहयोग मिला कि हम वहां से डेड बॉडी लेके एम्बुलेंस में आए हैं, तो उस एम्बुलेंस का खर्चा वो दे दिए, बस और कुछ भी नहीं।
1: और जो अब कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि अगर ये कार्रवाई इस तरीके की पहले होती, करप्शन इस तरह का ना होता, एमसीडी अगर इस तरह की बिल्डिंग को ना बनने देती, तो आपका भाई आज जीवित होता?
0: जी सर बिल्कुल, ये पूरी पूरी लापरवाही है सर।
1: जो एक्शन हुआ है
0: हम
1: उससे
0: तो चाहते
1: संतुष्ट
0: हैं
1: हैं आप?
0: उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
1: जो अभी तक का एक्शन हुआ है उससे संतुष्ट हैं आप?
0: नहीं नहीं सर, हम तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग में भी एक FIR करेंगे। अभी हमारा समय विपरीत है, हम दुख में हैं। जैसे ही हमारे घर का कार्यक्रम होगा, हम दुर्ग में भी एक FIR करेंगे उनके नाम से।
1: नीतीश छिब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पेरेंट्स जब आपसे मिले होंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा रहा, सबने देखा, तो आप बताएंगे कि क्या आपके परिवार से कौन सबसे पहले आपसे मिलने आया, और उनके लिए बहुत राहत की बात होगी कि इस बड़े हादसे में आपकी जान बच गई?
2: जी सर, सबसे पहले मेरे मदर्स और मेरी मदर, ब्रदर्स और सिस्टर आए थे मेरे से मिलने, तो वो काफ़ी परेशान थे जब आए, तो फिर मैं उनसे मिला जब, तो उनको थोड़ा सा ठीक लगा।
1: अब आप वापस जाएंगे पढ़ने के लिए, आपको क्या दिल्ली वापस आएंगे? डर सता रहा है कि वहाँ पर आएंगे तो कहाँ रहेंगे?
2: जी सर, डर तो है, बट ये है कि अभी थोड़ा 1 महीने तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वापस आना है नहीं। सरकार को थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, बिल्डिंग्स चेक करनी चाहिए, वेरीफाई करें कौन सी पुरानी है, कौन सी कब से खुली हुई है, थोड़ा इससे बच्चों को बचाव हो जाएगा।
1: आपके कॉलेज से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है?
2: जी जी सर, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी नीड हो, तो आप सीधे हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू नो, बोथ ऑफ देम हैव अ सिमिलर नेम, ऑफ कोर्स वन हु हैज लॉस्ट हिज ब्रदर, द अदर वन हु इन फैक्ट इज थैंकफुल टू बी अलाइव, ही वाज इन दैट वेरी बिल्डिंग दैट कोलैप्स एट सत्यनिकेतन, सर्वाइव दैट हॉरर बाय अ विस्कर, हिज फ्रेंड्स एंड हिम वर एबल टू सेंड अ लोकेशन एंड दे वर रेस्क्यूड ऑलमोस्ट आफ्टर एन आवर। But the question keeps coming back to the same thing. Is it just an eyewash? Because this keeps happening in the national capital, ladies and gentlemen. All this demolition, all these drives lead to nothing but more corruption. Would this be the final, in fact, warning that nothing of this nature should ever happen in Delhi again? At least that's the hope that many people have. Thank you so much, gentlemen, for speaking to me. All right, ladies and gentlemen, let's move up now to the political story of the day. In fact, a new shake-up, or let me say, a shake-up once again in the once very powerful BSP of Uttar Pradesh. Big shake-up in BSP with Mayawati now cutting ties with her nephew Akash Anand once again. The BSP chief says Akash put personal and family interests ahead of party and the movement, even prioritizing his father-in-law Ashok Siddharth's political career over his own. Mayawati also hit out at Akash for not reposting BSP post, calling him double-minded about the party's growth. This comes after Siddharth announced, his father-in-law announced his retirement, as Mayawati wanted it earlier, from politics, a move Mayawati called too late. Akash, once projected as Mayawati's successor, heir apparent, has now been completely sidelined and completely, you know, mere thrown out of the BSP after a series of removals and, of course, reinstatements over the past 2 years, a flip-flop that has continued as far as the BSP is concerned. This also comes at a time when the elections of Uttar Pradesh are at this moment, in fact, staring the all political parties. They are preparing for those elections. BSP, which used to be a mighty force in Uttar Pradesh in 2007, Mayawati came with a thumping majority, and that was the last time BSP saw you know, some sort of a silver lining as far as fortunes are concerned in the state of Uttar Pradesh. Since then, the story has just been of the internal feuds and a declining power of the BSP.
3: मैं फिर से उनसे कहूंगा कि आए अंबेडकर और कांसीराम के सपने अधूरे हम

0: While the movie Mirzapur is in fact doing very well at the box office, winning accolades, on the other hand, suddenly there is a crisis for the team. A controversy over the use of Maharana Pratap's song in Mirzapur movie is now erupting. And how? The singer, along with Maharana Pratap's kin, BJP, the political party, have all hit out at the producers and the movie, saying that they can't use the song in a crime series, especially in crime scenes. They have asked the film body to take action against the filmmakers.
1: अपर्या बालम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एनडीटीवी पर. आपसे एक स्पष्ट सवाल, आपका वीडियो हमने देखा कि आपने कहा कि आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट को और कह रहे हैं कि ये जो गाना है आपका है और आप भी जो हैं बहुत ही क्रोधित हैं, गुस्से में हैं कि जिस तरीके से जो गाने का प्रदर्शन इस फिल्म में किया जा रहा है, कि क्या आपत्ति है आपको? क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपका ये गाना है और किस तरीके से गाने का इस्तेमाल हुआ है, क्या आपत्ति है आपको?
2: जो लीगल सबसे पहले नमस्ते, खमागणी, राम राम आप सभी को. और देखिए, लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है, वो चीज़ें हम एक बार साइड

0: कर देते हैं। और जो मेन जो है, देखिए ये मेरा विरोध नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का विरोध है। इस तरह से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास हुआ है फिल्म में, वो निंदनीय है। और हमारी जो मुख्य जो हमने जो बात रखी है लगातार, ये भी कहते हैं कि ये इट्स नॉट ए चीप पब्लिसिटी स्टंट कि हम चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये है हमारे अपमान की बात है, राजस्थान के अपमान की बात है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं कि क्या ये जस्टिफिकेशन होगा, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम मंदिर में भजन सुनते हैं और वहाँ पर हम डीजे पे बार सॉन्ग्स चला के नाचें, ये नहीं होगा ना, ये सरासर गलत है। और इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, पूरा भारत इस चीज़ का विरोध कर रहा है। और जिस तरह से आम जन आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई है
1: जी। All right, quick break at this moment. On the other side, I'm going to bring you a special story, at least very special for us here at NDTV. NDTV makes us flash and surprise and shine at the Apple event. Well, NDTV's app was part of the Apple's presentation for the Tech Giants Global Showcase. I'll get you the details on this after a short break. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आरती और मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आग प्योर मसाला।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
9: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: professor doesn't agree with the solution?
1: Dekhe, it's not a question of agree. Stop living in a utopia, professor saab. हर चीज के इकोनॉमिक्स होते हैं. इस मुल्क में स्ट्रे डॉग्स को उठा करके बोला गया शेल्टर बनाएंगे. जब कॉस्ट कैलकुलेट की गई तो 100 करोड़ से ज़्यादा सालाना आया. इस देश के अंदर ओल्ड एज होम्स बन नहीं पाते. बुढ़े लोग जिनको उनके यंगस्टर्स छोड़ देते हैं सड़क पे मर जाते हैं. सेम इज ट्रू फॉर ऑर्फन्स. आप किस दुनिया में हैं सर? क्या फंड्स हैं इतने?
0: So then, Mr. Srivastav, what is the solution? Look, all of us can sit here and crib and say that this is a vicious circle. What is the solution?
1: Look, I am not saying you don't take care, don't take measures, but all your measures should have economic realities. सबसे पहले करप्शन हटाइए. सबसे पहले सरकार को घेरो. वो कॉरपोरेटर जिसके यहाँ, यू हैव टू, दैट इज द फर्स्ट थिंग. इस देश में एक पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी फाउंडिंग फादर्स लेकर के आए हैं. किस लिए लाए हैं? वो इसलिए लाए कि आदमी जो बैठा हुआ है आईएएस है, आईपीएस है, कॉरपोरेटर है, एमएलए एमपी है, तुम्हें तनख्वाहें मिलती हैं. You are a member of parliament, it's a perks. Kis liye?
0: Look, Mr. Srivastav, instead of looking for solutions, when you try and make this political, that
1: it's
0: is
1: not
0: where,
1: political.
0: That is where it,
1: it
0: ends
1: Congress
0: up going into an
1: party.
0: Endless loop. You're talking about the corruption today. Has corruption not existed all of these years?
1: Absolutely, I'm saying, whether it's Aam Aadmi Party, Congress, Communist, Left, BJP, in this hamam, mein sab nange hain.
0: तो सर इतने साल में फिर आपको कहीं बैन लेने चाहिए थे ना भाई?
1: Let me speak.
0: इतने साल से आप लोग हमाम में बैठे क्यों हुए थे?
1: क्योंकि इस देश की जनता, इस देश की जनता जागरूक नहीं है. इस देश की जनता घरों में सोती रहती है. एक्शन लेते नहीं हो. सेल्फिश लोग हैं.
0: ओके डॉक्टर
1: रंगनाथ, हमारे मुल्क के नागरिक सेल्फिश हैं.
0: सो यू डोंट डू योर जॉब एंड इट्स द जनता प्रॉब्लम. डॉक्टर रंगनाथ,
1: इफ यू हैव डन योर जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, दैट इज व्हाई दिस एमपीज एंड एमएलएस आर गुड टाइम.
0: डॉक्टर रंगनाथ,
2: दिस वाज एन रिस्पांस दैट आई वाज एब्सोल्युटली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय गुड फ्रेंड विवेक. दैट्स व्हाई आई से व्हेन लाइफ गिव्स यू अ विवेक, मेक इट अ बंसल नॉट अ श्रीवास्तव. What is he actually saying? Is he saying ki corruption should be tackled? Kal hat jayegi corruption. You have to give a solution. And the solution is jo 20,000 students university bharti kari ja raha hai, ek responsibility hona chahiye ki unko aap accommodation denge ya to campus mein ya outside. How much does it cost?
1: Are wo fees aur bada dega.
2: Can make a dorm.
1: Pehle hi private colleges ki fees itni zyada hai sir.
2: Fraction of the cost what the students are already shelling out.
1: Do you know the fee structure?
2: Vivek, I did not interrupt.
1: No. आप सरकारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट?
0: ओके, वन एट अ टाइम. देन आई वांट टू ब्रिंग इन द स्टूडेंट्स. लेट हिम फिनिश, आई एम कमिंग बैक टू यू.
2: Yes, the students who died, Padmaja, you know that each one of them was shelling out 20,000 rupees a month.
0: Minimum.
2: Are you telling me that not guarantee them an accommodation at 1/10 the cost? Of course it can. You just need a government stamp on the fact that from now on, any new student who's enrolled must be guaranteed accommodation. Ye sab bandh ho jayega mafia.
1: Only 10 seconds. Education mafia aur badhega. अभी तो सस्ते में कहीं कमरा लेके चार बच्चे जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है रह लेते हैं. कल वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला बोलेगा हिल से हॉस्टल भी लेना पड़ेगा, 25,000 भी दो और ये सिक्योरिटी भी दो.
0: सो जनरलाइजेशंस लाइक सेइंग वी मस्ट एंड करप्शन. सर, वी हैव लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट फॉर अ मिनिमम ऑफ 30-40 इयर्स ईच वन ऑफ अस. एंड अगर आपने करप्शन खत्म कर दिया और आपको लग रहा है 10 साल में होने वाला है, जस्ट टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव एंड देन आई वांट टू ब्रिंग इन सम स्टूडेंट्स ऑल्सो. हाउ मच डू दीज स्टूडेंट्स एक्चुअली शेल आउट? रिमेंबर दैट all of these people who are living in areas like Kingsway Camp, Mukherjee Nagar, Malviya Nagar, Shanti Niketan, they are people who are coming from small towns, people like us whose parents are spending a lot of money to ensure that they get a good education in one of the premier institutes. They pay up to 20,000 rupees per month, and what they get in return are rooms, and I have been in one of those myself. If you put in one bed, a single bed, there is no more space than to fit one table and chair and maybe one wardrobe. Do you know most of these kids do not even have an independent toilet? You end up paying 25,000 rupees and you have to share a toilet with somebody else. 10,000 rupees per month for one bed, and this is exclusive of food. You have to pay extra for food. Why you keep coming? Because this is close to a metro station. You think that you will save on fuel because you can just walk it to college. A lot of children now want to jump in over here. Yes, go on, ma'am. What do you want to say?
3: Ma'am, my very first thing is ki ye bana, who is responsible, if you are asking, each and every political party who was there, each and every representative jo humne dekha hai in the past 20 years, 30 years, 50 years, jab se wo building khadi hai, wo kitne saalon se khadi hai, each and every person is responsible for this. Be it MCD inspectors jinhone is cheez ko approve kiya, bureaucrats who have approved this, or politicians jinhone dekha is building ko bante hue. And second thing is ki Delhi University institution ki hum log baat kar rahe hain, 3 lakh bacche दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 1600 करोड़ का फंड दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है,

0: आज हॉस्टल्स कितने हैं, 4% बच्चों को हॉस्टल्स मिल रहा है, 5,000-6,000 हॉस्टल्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त, और हम कह रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक कैसे नहीं है सर? जनता जागरूक है। एक बच्चा जो कि 18 साल का है, अपनी फैमिली उसकी आई है, वो डिग्री पे ध्यान देगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, या वो जा करके ये देखेगा अगर कोई चीज़ है वो ब्रॉड डेलाइट में ऑपरेट कर रही है, तो फिर हाउ डू वी से कि एक बच्चा डिग्री पे ध्यान दे या फिर जाकर के वो रूम देखे?
1: ठीक है, आपने आपका आपका पीजी हवा में तो नहीं लटका हुआ, आपका जो पीजी है दैट इज द रेजिडेंशियल कॉलोनी, उसमें लोग हैं आसपास, उसका आरडब्ल्यू है, वो बिल्डिंग कैसे बनी, उसमें पीजी कैसे रन करा? आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टूडेंट, आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टूडेंट, आई एम ब्लेमिंग द रेजिडेंट्स ऑफ सत्य निकेतन जिन्होंने भ्रष्टाचार को होने दिया। उस कॉर्पोरेटर को रीइलेक्ट करते हो आप, उस एमएलए को रीइलेक्ट करते हो
0: सर। जब हम अब सवाल पूछ रहे हैं तो व्हाई आर वी बीइंग पुश्ड डाउन?
1: No, no, you are not being pushed out. I am telling you the dark reality. यहाँ तो आप PG में आ गए, जहाँ से आते हो वहाँ भी यही हाल है।
0: सर तो ये सवाल हम पूछे जाकर के PG owners से, या हम पढ़ाई पे ध्यान दें?
2: Okay, one second. Okay, Dr. Nagan, 30 seconds, then Harshvardhan.
3: No, not even 30 seconds. I will give you an analogy. What would you call a hospital that keeps on admitting patients without adequate beds for them? That is exactly what is happening. The universities keep on admitting students without giving them proper accommodation. They are worried how the lady is absolutely right. How can you study when you are given such, to be packed like sardines in an accommodation that is worse than a slum?
2: So, Harshvardhan ji, ye bataiye ki sirf 4% logo ke liye jab hostel hai, to phir college pe college kyun banaye ja rahe hain? Why can't all of them be given hostels or residences as well?
4: पंजाब, मुझे लगता है थोड़ा सा रियलिस्टिक जो अप्रोच है उससे आनंद भी आज मैं उनसे पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं, और विवेक भी वही काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे ही सेल्फिश हो गए, सोसाइटी सेल्फिश हो गई,
1: बच्चों के बाप सेल्फिश थे।
4: अरे एक मिनट,
1: जब खड़े होकर के गलत एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर बिठाओगे सर पे देश के, अजीब से मंत्री बीए पास तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर है,
4: आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या है? आप ये समझते हैं कि किसी भी इशू पर कम्युनिस्टों को कुछ बोलने का, कुछ ऐसा बोलने का मिले जिससे उनको पॉलिटिकली लाभ हो जाए, लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि आप कुछ करते नहीं है, आप कुछ करते नहीं है। मूल मुद्दे पे बात करने दीजिए। जो आनंद कह रहे हैं आइडियल उसको देखें तो बड़ा अच्छा है, सबको हॉस्टल मिलना चाहिए, सबको गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अप्रूव होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। और मैं जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे 90 के दशक में, हॉस्टल होते थे और उसके अलावा जो अलग अलग मोहल्लों में होते थे उनको हम लोग डेलीगेसी कहा करते थे, उनके भी बाकायदा जब वहाँ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते तो डेलीगेसी से भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते, तब वो छात्र संघ बनता था। एक तो देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ नहीं है, या छात्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। JNUDU में है छात्र संघ, लेकिन छात्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, वरना सभी छात्र संगठनों को, सभी छात्र संघों को क्या यह पता नहीं है कि इस तरह की बिल्डिंग में बच्चों को ऐसे रहना पड़ा है? नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे जरूरी बात है, जैसे हम लोग जो ध्यान में है, एक मंजिल दो मंजिल का बना, उसको ईंट की इमारत बनती थी और उस पर आके लोग रहते थे, बच्चों को सस्ते में मिल जाता था इसलिए डेलीगेसी में चले जाते थे। यहां भी वही होता है, साउथ कैंपस के नजदीक था वो, लेकिन उसके ऊपर बिना किसी पिलर के 1, 2, 3, 4, 5 और सारी सरकारें बेशर्मी से बेहयाई से देखती रही। वो कैसा वो MCD का कमिश्नर है जिसको अपने से इस्तीफा देने का मन नहीं हुआ? वो कैसा इंस्पेक्टर है जिसके हाथ से कलम चली होगी कि नहीं नहीं ये ठीक है? और उससे आगे मैं उसी में एक किसी को सुन रहा था, चूंकि मैं तो वहां गया नहीं, किसी को मैंने सुना कि यहां MCD 15 दिन पहले नोटिस लगा के गई कि ये रहने लायक नहीं है, लिवेबल नहीं। उसके बावजूद वो आदमी जो जिसके ऊपर सीधे सीधे अपराध मामला दर्ज होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का, उस आदमी ने वहां पर लोगों को कमरे किराए पर दे दिए।
2: हर्षवर्धन जी, फैक्ट इज, फैक्ट इज कि ये लोग सिर्फ सस्पेंड होंगे ना, इनमें से कितने लोगों को जेल में भी डाला जाएगा?
4: सस्पेंड नहीं होना चाहिए। आप जब तक रिकवरी का कोई बड़ा प्रेसिडेंस नहीं लगाएंगे, लगे कि हाँ एक इंजीनियर था करोड़ों कमा के बैठा था और उसके घर से पैसा खींच के लाए, लगे कि कोई इंस्पेक्टर था कमिश्नर था उसके घर से पैसा खींच के लाए। और एक बात मैं और कह दूं, अब यहां मैं सोसाइटी की बात करता हूं, जब ये घर टूटेंगे तो आपको भी सोचना होगा, अगर इल्लीगल बना हुआ है जब वो टूट रहा हो तो आप धरना प्रदर्शन करने मत जाइए।
5: सर मैं इतफाक रखता हूँ हर्षवर्धन जी की बात से। इनफैक्ट सर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आई एम स्टूडेंट ऑफ, आई एम परस्यूइंग माय मास्टर्स इन क्रिमिनल लॉ आल्सो। आई हैंडल दीज डेमोलिशन मैटर्स ऑन अ डेली बेसिस। इनफैक्ट इन अ मैटर विच आई एम रिप्रेजेंटिंग फॉर द क्लाइंट, देर आर 4 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स दैट हैव बीन पास्ड बाय द कोर्ट क्वा द सेम प्रॉपर्टी दैट यू डिमोलिश इट, that you demolish it, the MCD officials, they don't take any action against them. The person has to go to the court, file a contempt against
2: them. Why?

0: लीगल किसे कहते हैं?
1: अगर आप इनक्रोचमेंट करेंगे और उसके बाद अदालत जाके वहां से स्टे लेके आ जाएंगे और नेता वहां पहुंच जाएंगे बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, तो जब बच्चों की जान चली जाएगी तब आपको लगेगा यार ये तो इलीगल था। आपने अगर झुग्गियों को उनको स्लम को कह दिया कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, दिल्ली की सारी ऐसी कॉलोनी, हर जितने शहर है कम से कम अर्बन एरिया को रेगुलराइज करके, और मैं कह रहा हूं अगर 500 गज का उसने इलीगल एनक्रोचमेंट कर रखा, 250 गज को आप,
2: अरे वही बुलडोजर्स रन बिलेटेडली
0: पॉलिटिशियन के टूटने के विरोध में,
1: पुलिस नहीं जा सकती, और उस इलाके में अगर आप करें तो विकसित भारत ऐसे नहीं बन
2: सकता।
1: फिर करो डिमोलिशन करिए, किसी यूपीए के समय में अगर कोई कानून आ गया रोकने की कोशिश हुई, ये भला नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा।
2: एंड पॉलिटिशियन गो एंड स्टैंड इन द वे ऑफ बुलडोजर्स,
0: ऑफ कोर्स यस,
2: व्हेन दोस बुलडोजर्स ट्राई एंड ब्रिंग डाउन द लीगैलिटी, दैट्स अ प्रॉब्लम।
1: आप ये गरीब,
0: आपका बुलडोजर सिर्फ,
1: अरे वो गरीब है, वो गरीब है जिसने 5 मंजिला मकान के बच्चों का खून चूस लिया, बच्चों का खून चूस लिया, आप कैसी बात कर रहे हैं?
2: विवेक जी एक सेकंड,
1: आप कैसी बात कर रहे हैं? 5 मंजिला की बिल्डिंग रख के बच्चों का खून चूस लिया, आप कह रहे हो गरीब है?
2: ओके, लेट्स नॉट शाउट मिस्टर श्रीवास्तव, आई विल टेल यू, देयर आर कोठीज इन दिल्ली व्हिच आर वैल्यूड, व्हिच आर वैल्यूड ओवर एंड अबव 400 crores।
0: यस, मैं गिना देता हूं,
2: पीपल हैव गॉन एंड गॉट अ स्टे फ्रॉम कोर्ट, ये कोई गरीब नहीं है, दे आर स्क्वाटिंग इलीगली ऑन लैंड एंड वहां बुलडोजर चलना चाहिए।
0: मैं सुना
2: तो गरीब पे अमीर पे छोड़िए, बुलडोजर हर जगह चलना
1: चाहिए। जमीन पे कब्जा करो, रेगुलराइज कराओ, फ्लैट लो, फिर कब्जा करो।
2: डॉक्टर रंगनाथन
0: 10 सेकंड तो बोले,
2: डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन,
0: अब ये गलत बात है,
2: प्लीज आउट साइड,
0: क्योंकि डिमोलिशन की आपने बात करी, मुझे 10 सेकंड
2: और, सर 1 सेकंड,
1: ये बड़ी बड़ी बात है ना, ये आपकी आदत यही खराब है, गलत जगह जाते हैं,
0: बिल्कुल आप झुग्गियों को टारगेट करने की बात कर रहे हो और बुलडोजर की आप बात कर रहे हो।
2: एक सेकंड मिस्टर श्रीवास्तव,
1: सर बिल्डिंग गिराने को बुलडोजर लगेगा, आप हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे, हसिया थोड़ा सा नहीं टूटता है, और
2: सत्य निकेतन, सत्य निकेतन, सत्य निकेतन डिड नॉट हैव एनी झुग्गी।
0: कैन आई स्पीक फॉर 10 सेकंड्स?
2: गो ऑन।
0: थैंक यू। सैनिक फार्म वीआईपी एरिया है, इलीगल है, वो नहीं टूटेगा। छतरपुर फार्म इलीगल एरिया है, वो नहीं टूटेगा। आप ट्रेन लेके, बस लेके, कार लेकर के जाइए छतरपुर से गुड़गांव, नेशनल हाईवे, दोनों तरफ एनक्रोचमेंट, बड़े बड़े फैशन के आउटलेट्स, इंटीरियर आउटलेट्स हैं, नहीं टूटेंगे। इनको सिर्फ गरीब की झुग्गी दिखती है। दूसरी बात, जब एक आदमी दिल्ली शहर में, एक मिनट, ऐसा नहीं है सर, अब आप सुनिए, ये लेबर क्लास में हंसने वाले लोग, असलियत यह है, एक गरीब आदमी दिल्ली शहर में
1: आते हैं
0: जब घर बनाता है, एक डोंट इंटरप्ट मी,
1: तो ठीक रही है,
0: आई डोंट नो व्हाई यू
2: इंटरप्ट
1: मी, वन एट अ टाइम, बच्चों के लोग खड़े होते
2: हैं, हर्षवर्धन
1: उन बिल्डिंग वालों के लिए, उन बिल्डिंग वालों के लिए क्यों खड़े हो रहे हो? बच्चों के लिए खड़े हो जाओ ना, बिल्डिंग वालों के लिए मत खड़े हो, बच्चों के लिए खड़े हो जाओ,
2: फिनिश योर पॉइंट।
0: मैं एक गरीब आदमी दिल्ली शहर में आता है, दिल्ली के नागरिक और बाकी मेट्रोस के नागरिक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं घर बनाना कितना महंगा है। पहले वो बेचारा देखता है यहां मैं घर बना सकता हूं, हाँ या ना, एमसीडीबी वाला आता है, कहता है कोई बात नहीं साहब, थोड़ा पैसा तो बना लो, बाकी उन्हें बना रखा है, वो घर बनाता है, उसके बच्चे पढ़ने लगते हैं, रहने लगते हैं, 10 साल बीतता है, 20 साल बीतता है, 30 साल बीतता है, 40 साल बीतता है, एंड ही स्टेइंग बिकॉज ही वॉज अलाउड टू स्टे।
1: 40 साल से यही
0: ये सरकार शालीमार बाग को तोड़ती है,
1: पिछले 40 साल से सरकारें ऐसे ही इलीगल बस्तियां बसा रही
2: हैं, खतरे में डाल रही हैं, तो कर रही।
0: उसको कॉम्पेंसेशन कौन देगा?
2: व्हाट विवेक,
0: उसको कॉम्पेंसेशन कौन देगा?
2: व्हाट
0: जिसका घर आपने बसने दिया फिर तोड़ा?
2: व्हाट विवेक श्रीवास्तव सीम्स टू बी सजेस्टिंग इज दैट इन द नेम ऑफ रिमूविंग इलीगल कंस्ट्रक्शन द बुलडोजर्स विल रोल सिलेक्टिवली ओवर द वीक एंड द पुअर्स हाउसेस, द रिच एंड कनेक्टेड विल बी स्पेयर्ड। डॉक्टर रंगनाथन,
3: Padmaja, please give me a couple of minutes because you'd asked me to come in 5 minutes ago and this is the reason why Vivek comes to the studio because he can't be faded out. यहाँ पे चीखते चिल्लाते रहते हैं, अब इनको fade out नहीं कर सकते, मेरा time ले रहे हैं ये। Vivek, please don't. Vivek,
2: okay. I'm coming to you next, Mr. Bansal.
3: नहीं बोल लो फिर Vivek.
0: अरे मैं नहीं बोल रहा भाई, बंसल साहब दूसरे विवेक
2: बोल रहे हैं, डॉक्टर रंगनाथन
0: दो विवेक हैं आपके सामने।
3: व्हाट आई एम गोइंग टू से आउट हियर माइट हर्ट अ फ्यू बट इट इज एम्बैरेसिंग दैट माय फेलो पैनलिस्ट, ऑल थ्री ऑफ देम आई एम सॉरी टू से, आर सो क्रूअल एंड इरैशनल टुवर्ड्स फेलो इंडियंस। मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी जो रैशनैलिटी और लॉजिक वाली जीन है वो कहां चली जाती है। ये क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि भाई जो भी इलीगल बिल्डिंग बनाता है वो नहीं होनी चाहिए, करप्शन हटनी चाहिए। अरे भाई 80% ऑफ दिल्ली इज इलीगल एंड अनप्लान्ड, हर बिल्डिंग को गिराओगे और नहीं बनाओगे तब स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए वो दोगे? You have to have a situation where studying has to be clubbed with dignity. Stub mein baitha hai, toilet nahi hai, ek bistar nahi hai.

0: जी की मेहनत सॉल्यूशन इज टू बी मल्टीप्रॉन्ग व्हेन यू से पनिशमेंट इज टू बी डिटरेंट व्हेन वी से दैट देयर हैज टू बी सम रेगुलेटरी देयर हैज टू बी सम रेगुलेटरी बॉडी बॉडी व्हिच गोज इनटू द व्हेनेवर रेनोवेशन टेक्स व्हेनेवर इट हैज टू रिट्रॉफ्टीमेंट ऑफ एनी बिल्डिंग टेक्स प्लेस देयर हैज टू बी इट इज टू बी सैंक्शनड by a structured body or get some permission from the engineer or the, something of this sort has to be regulatory body has to be there.
1: So let me ask you this, Mr. Bansal, there has to be some का क्या मतलब है अभी तक बनाया क्यों नहीं रेगुलेटरी बॉडी
0: देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव स्टार्टेड
1: वो क्यों नहीं आया इतने सालों से 50 साल से सत्यनिकेतन में वो बिल्डिंग खड़ी कैसे रह गई देयर हैज टू बी सम का क्या मतलब है
0: एवरीबॉडी हैज टू टेक द ब्लेम दैट इज देयर
1: सर आई एम नॉट हियर टू लुक फॉर हु टू ब्लेम आई एम हियर टू लुक फॉर सॉल्यूशंस
0: आई एम सजेस्टिंग द सॉल्यूशन यू ओनली गॉट बैक टू द फैक्ट दैट इट दे आर एग्जिस्टिंग फॉर लास्ट 50 इयर्स आई वाज
1: लेट मी गिव यू सॉल्यूशन पहले माइक पे तो बोलो आप
0: मैं माइक पे ही बोल रहा हूं आप बोल लेते हैं आप this is what I am saying. It is to be, you know, the government is responsible. Some regulatory body like this building had come up and this was not being demolished. Some vigilance on the part of the residents as well, neighborhood residents as well. It is to be a
2: matter of fair because I should be there. Otherwise,
1: Dr. Ranganathan, 30 seconds, yes.
2: You know, 30 seconds? मेरे को 5 मिनट पहले आपने पद्मजा यू आर रनिंग योर संसद जस्ट लाइक दीज गाइज रन देयर संसद
1: ओके 2 मिनट्स डॉक्टर रंगनाथन गो ऑन यस
2: आई थॉट एटलीस्ट योर संसद वुड बी बेटर एंड मोर सिविलाइज अलास इट इज नॉट ये तीनों के तीनों एक सोल्यूशन नहीं दिया क्योंकि ये सब मिले हुए हैं ये जो मिस्टर बंसल है इनके सारे कांग्रेसी नेता इंक्लूड मनीष शंकर अय्यर वर स्टेइंग इन सैनिक फार्म्स नो पद्मा जाते हैं ऐसा करो मुझे बुलाओ ही मत
1: वन एट ए टाइम
0: स्टार्टेड यू नो जस्ट
2: यू नो देयर इज नो पॉइंट बिकॉज़ आई डोंट थिंक
0: I would say, let's not politicize it. It's a too serious a problem. It needs to be tackled in a very,
2: it
0: very...
2: It was a serious problem for 40 years. You did nothing about it. Why do you keep on saying it's serious a problem? You are complicit in it.
0: This problem is being highlighted at this point of time. This problem is being highlighted at this... It has come to the notice. Has NDTV at any point of time prior to this has held a debate?
1: Yes.
0: So, has on this...
1: The answer to this, answer to that is yes. Give him 2 minutes without interruption because all three of you are in the studio. He's not. Go on, Dr. Ranganathan, make your call.
2: Is there somebody who is speaking for the students?
1: Yes.
2: वो दो लाख रुपया फीस दे रहे हैं और आप उनको 5,000 के अकोमोडेशन नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी की क्योंकि आपको पार्लियामेंट में कहना है कि हमने 10,000 स्टूडेंट्स और एजुकेट कर दिए 20,000 और जुके शर्म की बात है ये तीनों की तीनों जो वहां बैठे हैं स्टूडेंट्स का एक भी नहीं सोच रहा द यूनिवर्सिटी विल बी पेइंग अ पिटेंस इफ इट गारंटीज एटलीस्ट वन अकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट्स
0: हु कम आउट ऑफ द विलेज अ स्टूडेंट हु कम विद बेयर मिनिमम मनी ही कम्स टू द टू द बिग सिटी
2: टू
0: उसे बेटा
1: अगली ट्रूथ इज दैट हैड इट नॉट बीन फॉर पॉलिटिक्स दिस मेस वुड नॉट हैव प्रोलिफरेटेड अराउंड अस इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स दैट थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स टू एब्सोल्युटली अबिस्मल यस गो ऑन यंग लेडी
3: मैंने सिर्फ सॉल्यूशन की बात की आनंद ने शायद सुना नहीं
1: ठीक है
3: मैंने सिर्फ सॉल्यूशंस की बात
1: आई विल से सब लोग मिले हुए नहीं है दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स दैट दे आर ऑक्युपाइड
2: मिले हुए सब मिले
1: लेट दिस यंग लेडी स्पीक
0: यस गो ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फेल्ट दैट आई वाज ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज और आई वाज इन कहूट विद देम और आई वाज नॉट कमिंग टू
1: अरे मिस्टर बंसल दिस इज नॉट अबाउट यू यस गो ऑन
4: सो सर डॉक्टर आनंद यू मेड अ स्टेटमेंट दैट वी शुड कम टू सॉल्यूशन एंड यू गेव अ सॉल्यूशन दैट ड्यू शुड प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर एवरी स्टूडेंट डू यू थिंक इट्स स्ट्रक्चरली पॉसिबल टू डू
2: Yes, absolutely.
4: How? I want a solution from you. And second of all, I want to ask that DU ke campuses itne bade hote hai, why don't we have hostels and staff accommodation there?
1: Okay, first answer, Dr. Ranganathan, how is it possible to provide accommodation to such a huge number of students?
2: Now, 1 second, please remember, they have made this number a huge number precisely because they don't care about the accommodation. They are not teaching the students with any dignity. The students are staying in a slum with two bricks as a toilet and they are saying, ki padh lo, likh lo. Of course it is possible. Of course it is feasible.

0: When you're charging 20,000 rupees per month to a student, do you think you cannot have a proper one room, accessible, safe, and very clear accommodation for them?
1: But how do you think it will happen? Like, how do you think we'll go about the process? How will we make feasible for every student?
2: There are 2.5 lakh regular students.
1: I want the answer.
2: Yeah.
1: About
2: only 7,000 hostel seats. 2.5 lakh students who come into
0: Delhi. It's a crime.
3: Make Mr.
2: But how will give them 2.5 lakh houses?
3: Education minister.
2: Who will now, make 2.5 lakh houses?
4: अरे World Bank से पैसा लो अपने businessman. दोस्तों को तो वो बनवाएंगे आधा वो आधा बीजेपी
2: के लिए. Let's not make it frivolous if we are actually looking for solutions. No, it is not frivolous.
4: This
2: it doesn't need
4: frivolous
2: to be frivolous.
4: Now.
2: It doesn't need to be frivolous.
4: एक गरीब मुल्क में आप कह रहे हैं सबको हॉस्टल दो.
2: Okay, 10 seconds, Dr. Ranganathan. I really want to bring in students. 10 seconds, go on.
0: No, this is why this country has gone to the dogs. पहले प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इतनी बड़ी हो गई, फिर कह रहे हैं इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. Shame on you. The fact of the matter is,
4: you talk of the economics. Calculate the money and tell me.
3: And really, I would say that.
5: My deep condolence to the family who lost their Zim. मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक प्रथा चलती थी जहाँ पे हम बलि दिया करते थे जानवरों की और फल फूल की. कुछ भी नया काम, कुछ भी सुधार लाने से पहले. वही हमारे देश में आज हो रहा है. हम बच्चे को बलि चढ़ाया जाता है, मरते हैं, उसके बाद फिर समाधान खोजने हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए आते हैं. और समाधान में क्या आता है? बुलडोजर चलाना. बुलडोजर चलाने से इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन उन गुनहगारों को कौन उनसे जवाब पूछेगा? मेरा ये क्वेश्चन है. और मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लेके मौजूद नहीं हूँ, मैं यहाँ सॉल्यूशन भी लेके उपलब्ध हूँ. मेरा सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को एक ऐप बनाना चाहिए जिसमें पीजी ओनर और स्टूडेंट दोनों रहें, और उसमें ये बताया जाए कि कौन सा पीजी इलीगल है, कौन सा लीगल है, किस पीजी को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, कौन से पीजी में अच्छा पानी आता है. क्योंकि दिल्ली में हम क्लोरिनेटेड वाटर पीते हैं. दिल्ली से जब हम अपने घर से आते हैं तो बाल लेके आते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो बाल झड़ जाते हैं.
2: तो आप कह रहे हैं कि इसका रेगुलेशन होना चाहिए और इसको एक जगह पे इट शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज दिस इंफॉर्मेशन. नाउ इंसिडेंटली अ बिगिनिंग, एटलीस्ट वी आर टोल्ड दैट अ बिगिनिंग फॉर दैट हैज बीन मेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द पीजी रेगुलेशन लॉ. Imagine, and I agree with this young man. You know, he said that first you have to have a series of these tragedies for somebody to wake up and say, oh, we need to have a regulation law. Imagine all of this while, why wasn't this regulation done? Has anyone thought about it? Has anyone asked that question? What are the proposed provisions? Now the proposal is being made. A mandatory PG registration within 90 days, a unique registration number for every PG. Delhi police and MCD clearance is going to be mandatory. Imagine, this clearance wasn't even mandatory all of this while. A GOV PG portal for verified listing of PGs, exactly what this young man is talking about. CCTV coverage at entrances, common areas, licensed night guard for PGs with 15 plus students. Area-wise rent bands to be set by a panel. So there is going to be regulation of how much rent should be charged. 30-day written notice before eviction and strict action on non-compliant PGs. And that's why I ask Harshvardhan ji. Aap sochiye, ye ladka yahan par bol raha hai ki hume ek app karna chahiye. Ab ja karke LG ne meeting ki aur unhone kaha, are hume ek portal karna chahiye. Itne saalon se ye portal to ho jana chahiye tha na?
6: Padmaja, jitne isme proposed suggestions hain, regulations hain, wo sab in place hain. MCD एक ईंट रख के देखिए, आपको बताएगी कि MCD होने का मतलब क्या होता है. और कोई कहेगा कि वहाँ के कॉरपोरेटर को पता नहीं होगा. और हमारे ये नौजवान साथी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन बुलडोजर किस संदर्भ में आप देख रहे हैं? अगर आपको रेगुलेशन करना है, कोई इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर ही लगेगा. सवाल यहाँ ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि जो इलीगल ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, उनको हम तोड़े तो फिर. और दूसरा, वो कोई बगल का पड़ोसी नहीं करेगा, वो झगड़े करने के लिए नहीं आएगा. वहां के लिए बाकायदा अथॉरिटी है, उनके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ, वो काम नहीं कर रहा. और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो उस इलाके में जितनी इलीगल बिल्डिंग है एक बार टूटनी चाहिए. वो सालों से बच्चों से खून चूस रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सेफ स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे. और मैं एक बात कहता हूं जो थोड़ा समझ में आए, दिल्ली में इतने लोग रहते हैं. आनंद को शायद, चूंकि प्रोफेसर साहब है, लंबे समय से मुझे भी मिला हुआ बता दिए, तो मैं तो सोल्यूशन ही दिया. वो शायद उस तरह से पढ़े नहीं है. हम जो डेलीगेसी की बात करते हैं, हमारा इलाहाबाद में घर था, हम थोड़ी ना हॉस्टल लेंगे. हम अगर उतने एकोमोडेशन जो दिया जाता है किसी भी आइडियल से आइडियल कंडीशन, वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता कि सारे के सारे हॉस्टल

0: हॉस्टल में रहेंगे। जेएनयू के बगल में पूरा मुनीर का गांव है जो बसा हुआ है, जिसमें सब बच्चे रहते हैं। डीयू तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों के करो कॉलेज, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, हम एक ना गाड़ी के आगे काट रख देंगे, ना ना हॉस्टल नहीं बनेगा तो पढ़ने नहीं देंगे, ये तो रिग्रेसिव हो जाएगा ना। जरा ये भी सोचना चाहिए, बिल्कुल उसको रेगुलराइज करिए, अच्छे से अच्छा उसको डिग्निटी दीजिए स्टूडेंट को, लेकिन ये कहना कि ना हॉस्टल नहीं होगा तो सब बंद कर दो, ये आंकड़ों की ये ठीक नहीं।
1: यू हैड प्लेंटी ऑफ स्टोरीज फ्रॉम सत्यनिकेतन, देयर आर मोर स्टूडेंट्स हियर हु लिव इन हॉस्टल्स, आई वांट टू गेट अ फ्यू ऑफ देयर स्टोरीज इन जस्ट अ सेकंड। आप पीजी में रहते हैं, कहाँ है आपका पीजी और किस तरीके का है बताइए।
2: जीटीबी मेट्रो में है, लाइक नॉर्थ कैंपस के पास में। सर लाइक जब मैं दिल्ली में आया था तो लाइक आई कम फ्रॉम उड़ीसा, तो स्टार्टिंग में मुझे पीजी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ था। मतलब पीजी क्या, लाइक आई अप्लाइड फॉर हॉस्टल, दो तीन महीने तक हॉस्टल पे कुछ अपडेट्स नहीं आती। तो सर ऑल दो मेरे रिलेटिव्स रहते थे तो मैं उनके घर में दो तीन मंथ रुक गया था, तो इट वॉज़ फाइन फॉर मी। पीजी सर आप देखने जाएंगे, आप देखेंगे हर जगह का अपना अलग अलग रेट है। मैं साइड वाले पीजी में देखूंगा, उसमें पहले 7 दिन अच्छा खाना दे देंगे, फिर खाने का क्वालिटी बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। सर आई गो टू एरिया जहाँ पे मेरे दोस्त लोग रहते हैं, जैसे देर इज़ मलकागंज वगैरह, वहाँ पर देखेंगे सर मतलब एक घर के ऊपर उन्होंने पूरा जैसे मॉन्यूमेंट जैसा पूरा खड़ा कर दिया, मतलब जस्ट टू पुट, मतलब और बच्चे उसमें रहे। तो सर ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड सर मतलब ये बिल के
0: रेगुलेशन जरूरी है।
1: कितना कितना पैसा देते हैं आप हर महीने?
2: सर इट इज 15,000।
1: 15,000?
2: यस मैम।
1: एंड प्लस यू पे एक्स्ट्रा फॉर फूड आल्सो?
2: मैम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल।
1: Extra electricity bill. So you end up paying about 15 to 20,000.
2: 18 to 20 is the like.
1: और घर के मुकाबले आपको PG उतना ही बड़ा है जितना घर में कमरा हुआ करता था।
2: मैम it is like
0: वहाँ तो bed होती है, वहाँ कमरे नहीं होते।
2: Yes ma'am.
0: वो तो bed होती है आपकी, दो तीन चार ऐसे ही होता है।
2: Yes ma'am.
1: तो यानी कि single ले रहे हैं तो एक bed का 15,000 रुपए दे रहे हो।
2: Yes ma'am.
1: और यानी घर पे अपना खुद का कमरा था, यहाँ एक bed में रह रहे हैं 15,000।
2: And ma'am to be honest, आपको ओडिशा में उससे बड़ा घर मिल जाएगा at the half the rate. मतलब like you will get 2 to 3 BHK, मतलब 15-20,000 में, like the whole house itself.
3: You get the food along with it?
2: Yes sir.
1: 15 to 20,000 this boy would have got on rent in his house. Yes, Dr. Ranganathan, go on.
4: मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं हर्षवर्धन जी मेरे मित्र नहीं मेरे भाई हैं, कि ये सारे इंडियंस, मैं दोबारा कह रहा हूं, लॉजिक और रैशनैलिटी कहां चली जाती है? आप सिर्फ बिल्डिंग की सेफ्टी की जरूरत नहीं है, एक काल कोठड़ी भी सेफ हो सकती है, टॉयलेट अगर 100 लोग सेफ यूज कर रहे हैं उसको भी आप सेफ कह सकते हैं। वेयर इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन?
0: ऐसा मैंने कहा नहीं,
4: आई कैन नॉट, हर्षवर्धन जी ये बहुत, आप ऐसे नहीं थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर हैज टू बी एजुकेशन हैज टू बी डिसेमिनेटेड विद डिग्निटी। Even if you are staying in a safe building, it is not dignified for us 10 students to be sharing one tiny cubicle room without any food, without any dignity. ये समझ में क्यों नहीं आ रहा?
1: So Anand, Anand, I think
0: मैं इतनी देर से वही कह रहा हूँ।
1: Anand, I think we are all agreeing on this, but how do we arrive at that?
0: तुम विवेक से मिला हुआ तो मत कहिए, ये ज़्यादा।
4: You are not, because you are not putting universities on the dock there. What do you mean by you are agreeing to it? You are not agreeing.
5: अगर आप ये गारंटी कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी गारंटी करेगी, यू मस्ट, वी आर गोइंग टू गिव एन अकोमोडेशन, टेक इट, दे माइट मेक इट एक्सपेंसिव, विल द गवर्नमेंट सब्सिडाइज इट फॉर द स्टूडेंट? सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा स्टूडेंट को?
4: यूनिवर्सिटी
5: या कम्युनिस्ट है, हम तो कहेंगे सब्सिडाइज करो और बच्चे की कस्टे।
1: ओके, आई वांट टू गेट अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स। यस, गो ऑन मैम।
6: Yes, sir. I'm just way curious to know that why are local banks and the insurance companies still financing and insuring the buildings that are not legal and they are not approved by MCD approval plans too?
0: आपको सिर्फ मैं जानकारी के लिए बताता हूँ, इनमें से किसी को बैंक फाइनेंस की जरूरत नहीं।
1: पूरा इलीगली बनती
0: है। कौड़ियों के नाम पर जमीन ली है, एक कमरा बनाया, पांच कमरा बनाया, उसके पैसे से दो कमरा बनाया, फिर चार कमरे बनाए और 3 मंजिल की इजाजत पर 5 मंजिल।
5: These are not
0: ये सीधे सीधे करप्शन, ये जो अथॉरिटी है उसका अपना काम ना करना, सीधे सीधे उसका मसला है और कुछ ये है।
5: दिस इज लालडोरा और विलेज और या रीसेटलमेंट कॉलोनीज में बनते हैं, इनकी रजिस्ट्री नहीं होती, इस पे बैंक फाइनेंस नहीं होता, इस पे पावर ऑफ अटॉर्नी से वो आपके नाम पे ट्रांसफर करेगा। अभी सरकार ने उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस लाई है, विच आई I feel was the good.
1: Like what happened in Satyaniketan, this was a JJ colony. Yeah. And it was meant to have ground plus two. Yes. But when nobody was looking on, where everyone was looking, in a JJ colony, you have 5-6 stories being built. So nobody takes a loan, it just gets built. Yes,
7: since
1: go on.
7: We were talking about MCD officials. Yes. There are two MCD officials according to a news report. Yeah. They were also involved in the Malvi Nagar fire.
5: Yes.
7: And they are now suspended, suspended.
1: Exactly.
7: Why wasn't any action taken when the fire incident happened?
5: So that is what I'm trying to say.
7: Are we waiting for new incidents to occur every day?

0: आपकी गलती है, मैं इसलिए कह रहा था दैट वी मस्ट पुट द प्रेशर ऑन एवरी गवर्नमेंट वट एवर बी द पार्टी. और ये एडवोकेट साहब बैठे हैं, हमें कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए, हमें पार्टीज पे प्रेशर डालना चाहिए, हर स्टेट के अंदर कानून बनाओ, अगर ऐसा हादसा होगा उसको बनाने वाला वो, उसको साइन करके अथोराइज करने वाला वो एमसीडी का अफसर, चाहे रिटायर होके घर में बैठा हो, उसको पकड़ो और जेल में डालो, टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, दैट इज मिसिंग इन दिस नेशन. ये पैसे और कंपल्सरी करने से हॉस्टल को कुछ नहीं होगा, इनको डंडे मारो तब सुधरेगा ये मुल्क. और उसके लिए आपको, जनता को, आप जेंजी हैं, हम नहीं कर पाए, हम फेल हो गए, आप हमारी तरह फेल ना हो, आप खड़े होकर के अपने वोट की ताकत को एक्सरसाइज करो, सरकारें सही बनाओ, उनसे काम करवाओ.
1: एट द वेरी लीस्ट मिस्टर बंसल, कैन वी बी अश्योर्ड दैट द नेक्स्ट टाइम, इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ डिसाइडेड टू स्टेप इन एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज बिल्डिंग्स मशरूमिंग बट ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ पीजीज, नो गवर्नमेंट, नो पोलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू जम्प इन. You know, you had earlier Arvind Kejriwal, a very famous statement of his, where he said ki are a bulldozer kyun chal raha hai, bechare gareeb log kidhar jayenge. The fact is that when these illegal structures are removed, there will be about 80 to 85,000 people who will be affected. So no political party should jump in and say, oh, you know, my voters, now let me go and stand with them.
2: Madam ji, once an atmosphere is, political atmosphere and social atmosphere is built up, a narrative is created like this, no political party would dare to enter into this. Yeah, I'm telling you. Gen Z, what they did in Jantar Bantar, they were able to build, you know, even Supreme Court was compelled to take back the cases.
3: Yes.
2: That's what I'm coming to.
4: Desh mein danga karke, anarchy karke aur cases wapas lena, usko hum Gen Z ki power kehte hain.
3: Andolan
4: kehte hain. Ye power nahi hai.
3: Andolan.
4: Ye bahut kharab disha mein hum log ja rahe hain. Isko nahi samajh mein aa raha. Aap us serious issue ko kyon usse compare kar rahe hain?
1: This has to be done through law.
3: Yes.
1: And this has to be done legally. Not saying that Gen Z should now sit at Jantar Bantar and make the Cokes Act. No.
2: Example, that once a political and social atmosphere is built up against a particular thing, political parties are compelled to initiate on that.
1: But that is not the solution. Yes.
5: Just hear me out. Sir, I think hum thoda issue confuse kar rahe hain. There are residential properties and there are commercial properties.
3: Yes.
5: Padmaja ji ne bola abhi ki ye 40 saal se property khadi hui hai. Kya agal bagal walon ko nahi dikha ki ye 40 saal se property khadi hui hai? In fact, I would resonate with the comments that have been made by Mr. Vivek ki agal bagal walon ko hi action lena chahiye bhai. If somebody, you should, a public spirited individual should go to the court.
1: No.
5: You should go to the court.
4: आपको भी नहीं विवेक की तरह.
1: No.
5: You should go to the court.
4: बगल का आर्मी कंप्लेंट करके झगड़े करेगा? एमसीडी का एमसीडी का ऑफिसर, पुलिस वाले, जल बोर्ड वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो किस लिए?
2: पुलिस कहती है
4: बगल वाला क्यों कंप्लेंट करेगा?
1: इट इज अ वेरी नोबल सेंटीमेंट. But yes, in real life, the onus should be on the government, the corporation, and the owner of the building. Not on the poor neighbor. Now the neighbor is going to be put in the dock. Ki tumne kyun nahi bataya ki bhaiya illegal
5: chal raha
3: hai. I am not saying that.
4: Neighbor ki 5 manzil ki hai. Any public manzil ki hai. Wo kya batayega?
5: That something wrong is happening. Can go to the court.
1: He should go to the court.
2: He is talking of a jagruk samaj.
3: Yes.
1: No. Pehle jagruk sarkar karo sir. Samaj ki
4: apni mushkilein to sulha nahi pa raha. Wo chale ek aur mushkil lega.
6: सर, मेरा सीधा सा ये सवाल है कि हम ये चीज़ें पहुँचाए प्रोटेस्ट तक भी क्यों पहुँचा रहे हैं? हम क्या जेंजी का वेट कर रहे हैं कि कब वो प्रोटेस्ट करेंगे, कब ये सब दंगे होंगे और उसके बाद हम कुछ करेंगे? अगर अगर पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहे होते तो ये नौबत ही नहीं आती प्रोटेस्ट करने की.
0: इस मुल्क ने, और मेरी ये वो तो बहुत बुजुर्ग हैं, 80+ के हो चुके आनंद रंगनाथन, मैं तो अभी जेंजी अपने को मानता हूँ, तो अगर इन्होंने करना होता, इस जनरेशन ने कर चुके होते, फेल जनरेशन है. और हमने अपने मुल्क को कगार पे ला करके हाँ सब बर्बाद किया है हमने।
1: विवेक जी जो फेल
0: जनरेशन से उम्मीद है, आपकी जनरेशन से उम्मीद है,
4: डिस्क्लेमर
2: मिस्टर मोदी
4: सब बर्बाद किया है, हम नहीं, हम सक्सेसफुल।
1: एंड इट्स वेरी इजी टू से फेल जनरेशन, सर दिस जनरेशन हैज सीन,
0: हम बड़े सक्सेसफुल हैं,
1: दिस जनरेशन
0: रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है दिल्ली शहर,
1: ओके, दिस जनरेशन हैज दिस
0: बड़े सक्सेसफुल हैं,
1: यस, सो दिस जनरेशन हैज सीन मल्टीपल पार्टीज व्हिच हैव बीन इन गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन दिल्ली,
0: आप भविष्य है खड़े होइए देशकारी Okay. और जो ना सुने पॉलिटिकल पार्टी उतार के फेंकिए,
1: ओके, वेरी क्विकली,
0: नहीं कर पाए आप करिए।
1: आई वांट टू गेट मोर पीपल टू स्पीक अप, बताइए।
7: मेरा ये कहना है, आप लोगों को शर्म आती है पहले बताइए।
0: मुझे आती है,
7: आती है तो ये बताइए, आप कह रहे हैं एमसीडी ने नहीं ये नहीं किया या उसने नहीं किया, लेकिन आप अगर आपका बच्चा होता आप उसको पहले से पता होता उसको प्रॉब्लम हो रही है आप कंप्लेन करते, मान ले आप मान लीजिए आप कंप्लेन भी करते तो क्या आपका रिस्पॉन्स, क्या लोग आपके साथ कॉर्पोरेट करते नहीं करते, लेकिन सब यूनिटी से करते हैं तभी वो कॉर्पोरेट
0: होते। बिल्कुल सही कहा, शर्म आती है या नहीं,
4: सबको शर्म के चक्कर में आपकी बेशर्मी को सब पे क्यों डाल दिया,
7: आप लोग
4: कहा नहीं था, हमने तो कहा नहीं,
7: हमें प्रॉब्लम हो रही,
4: ये तुमने शर्म के चक्कर में इन्होंने ये कहा, इनकी बात को तुमने सबको शर्म से जोड़ दिया, बोलने से पहले सोचना चाहिए ना
1: विवेक,
4: यूथ को और सोचना चाहिए।
1: अरे सर आप माइक पे तो बोलिए।
0: हम बेटा तीनों चारों समेत इस दुनिया में जितने मिडिल एज्ड बैठे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, उनमें से किसी को शर्म नहीं आती, हमसे किसी को शर्म नहीं आती, हमने तुम्हें खराब भविष्य दिया है, हमने तुम्हें डोनेशन वाले कॉलेज दिए,
7: जब प्रॉब्लम हो जाती है तब आप सॉल्यूशन बताते हैं, जब प्रॉब्लम हो जाती है तभी आप सॉल्यूशन बताते हैं, क्या उससे पहले प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी कोटा में बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है
4: वो भले आइडियल सजेशन हो प्रैक्टिकली लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, लेकिन ये हर कोई चाहता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको हॉस्टल के साथ एकोमोडेशन अगर रूल्स रेगुलेशन होते तो हम आज इसकी बात नहीं कर रहे थे, उनको कोई बहुत अच्छा सा घर और अपने घर में, हम जैसे कमरों में रहते हैं वैसे तो हॉस्टल में भी नहीं मिलते, हॉस्टल में दो बेड होती है, मैं तो हॉस्टल भी जानता हूं, डेलीगेसी भी जानता हूं, असली चीज क्या है, आपको ढंग की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ढंग की लोकेलिटी में ढंग का कमरा पढ़ने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है,
0: इसीलिए
1: मैं आपको माइक नहीं देती हूँ, नीचे कर लो ना थोड़ी देर, जब माइक होता है माइक में बोलते नहीं हो, जब माइक मिलता है तो चिल्लाते हो, बोलो। हाँ
8: पद्मजा जी, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ इसलिए पाया क्योंकि मेरे को हॉस्टल दिया सरकार ने, ये विवेक जी डफली स्टडीज डफली ऑनर्स पता नहीं कहां से पढ़ा, हो सकता है इसलिए ये पढ़ नहीं पाए क्योंकि ये सड़क पे थे या कहीं पे भी थे डंजन में थे। पॉइंट इज एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए डिग्निफाइड वे ऑफ एजुकेटिंग, अगर वो हम नहीं करेंगे तो जो उड़ीसा से आए आप उनको एक बार दोबारा लाइए माइक दीजिए उनको, वो 20,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, ना उनको खाना मिल रहा है 10 लोगों के साथ रह रहे हैं, ना टॉयलेट मिल रहा है, क्या ये डिग्निटी एजुकेशन की, अपने बच्चों को तो पढ़ा लिया और अपने सारे नेताओं दोस्तों को इलीगली सैनिक फार्म में रखा हुआ है, कह रहे हैं कि नहीं हम ढोएंगे इलीगल स्ट्रक्चर, बंसल अभी तक ढोया आपने, अभी तक इलीगल स्ट्रक्चर, मनीष शंकर अय्यर जी को वहां से ट्रांसफर करवाइए,
2: पहले
1: लॉन्ग
9: टर्म प्लान, बिकॉज मैम प्लान मतलब बना लिए जाते हैं बट इनपे काम नहीं होता है, इवन मैम पीपल भी बहुत इग्नोरेंट है हमारे सोसाइटी में, वो लोग ध्यान नहीं देंगे, उनको तब पता चलेगा जब मैम लाइक जब मोहल्ले में चोरी होती है तब हम लोग मतलब सतर्क होते हैं, तो मैम वही वाला है मैम, इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस, हम खाली गवर्नमेंट से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मतलब सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, हमें अपने साइड से भी करना चाहिए मैम, प्रोटेस्ट इज नॉट द ओनली वे मैम, क्योंकि प्रोटेस्ट से क्या होगा मैम, इट विल बी वन मंथ, उसके बाद क्या है, अभी हम बात भी नहीं करेंगे,
1: द गवर्नमेंट नीड्स टू गेट इट्स फंडामेंटल्स राइट एंड नॉट वेट फॉर समबडी टू हिट द स्ट्रीट ओनली इन ऑर्डर फॉर द गवर्नमेंट टू डू देयर जॉब, दैट इज नॉट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, यस गो ऑन यंग लेडी।
10: As you all are focusing more on how Gen Z should bring all these matter to limelight, do you think that every other month the Gen Z has to come on the roads to bring these topics on the limelight?
1: Exactly. Just yeah, because padhne aayenge ya fir aapke liye jantar mantar pe baithe rahenge?
2: Nobody suggesting this.
1: Go on.
11: Sir, matlab har bar systemic failure ka matlab bacche hi kyun hote hain? Matlab bas main yahi puchna chahta hu. Har bar matlab koi bada incident hoga aur bacche jab marenge tabhi wo systemic failure ke baad hi wo resolve honge matlab cheeze.
12: Okay. ये मुझे लगता है ना कि कई बार हम लोग किसी बात की सोच, चूंकि बच्चों की बहुत सी बात हो रही है, छात्रों की, मुंबई की चौल में सामान्य आदमी गिर के बिल्डिंग मर जा रहा है, दिल्ली में बिल्डिंग्स गिरती हैं, जो लेबर फोर्स होती है, जो लेबर आ रहा होता है वो मर जा रहा होता है, ये सबकी लाइफ और सबकी डिग्निटी का सवाल है।
1: yes.
12: हम लोग इस बहाने ये बात कर रहे हैं चूंकि बच्चे हैं, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि इस वक्त ये बात हो रही, ऐसा नहीं है कि दूसरी बिल्डिंग जो है वो सेफ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ब्रॉडर इस इशू को देखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि आपकी बिल्डिंग से, और मैंने तो बहुत बड़ी बात कही, विकसित भारत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो इस देश में कोई भी बिल्डिंग इस तरह से नहीं गिरनी चाहिए। एक लाइन की बात है, उसमें बच्चे, बड़े, लेबर, कोई बड़ा अधिकारी, इसका कोई मतलब
1: नहीं। एंड आई थिंक देयर इज वन थिंग दैट एवरीवन सिटिंग हियर एग्रीज अपॉन, पीपल हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर जेन ज़ी और वेदर यू आर 100 इयर्स ओल्ड, वेदर यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल और अ पीजी और इन योर ओन हाउस। बट हाउ डू यू मेक दैट हैपन? शुड इट रिक्वायर फॉर समबडी टू हिट द स्ट्रीट्स, टू गो टू जंतर मंतर, टू स्टार्ट एन एजिटेशन, टू गो टू कोर्ट, और टू जस्ट एक्सपेक्ट दैट द गवर्नमेंट, द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी वोट इन आर सिंपली डूइंग देयर जॉब? And that is possible only when they are held accountable day on day. It's not enough to make reels and say that we are clocking it. It is important that if you really want to understand the grammar of Gen Z, you make sure that this Gen Z is alive, safe, and studying with dignity. Thanks very much to this wonderful group of people who have joined us here and to our experts. And a very angry Professor Ranganathan. Hopefully, we will see these reforms happen sooner rather than later. Thanks very much for joining us on People's Sansad. Because remember, when it really matters, the buck stops here. Thanks for watching.

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़.

0: and maybe one wardrobe. Do you know most of these kids do not even have an independent toilet? You end up paying 25,000 rupees and you have to share a toilet with somebody else. 10,000 rupees per month for one bed, and this is exclusive of food. You have to pay extra for food. Why you keep coming? Because this is close to a metro station. You think that you will save on fuel because you can just walk it to college. A lot of children now want to jump in over here. Yes, go on, ma'am. What do you want to say?
1: Ma'am, my very first thing is ki ye bana, who is responsible, if you are asking, each and every political party who was there, each and every representative jo humne dekha hai, in the past 20 years, 30 years, 50 years, jab se wo building khadi hai, wo kitne saalon se khadi hai, each and every person is responsible for this. Be it MCD inspectors jinhone is cheez ko approve kiya, bureaucrats who have approved this, or politicians jinhone dekha hai is building ko bante hue. And second thing is, ki Delhi University institution ki hum log baat kar rahe hain, 3 lakh bacche दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 1600 करोड़ का फंड दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, तो और आज हॉस्टल्स कितने हैं, 4% बच्चों को हॉस्टल्स मिल रहा है, 5,000-6,000 हॉस्टल्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त, और हम कह रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है. जनता जागरूक कैसे नहीं है सर? जनता जागरूक है. एक बच्चा जो कि 18 साल का है, अपनी फैमिली उसकी आई है, वो डिग्री पे ध्यान देगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, या वो जा करके ये देखेगा अगर कोई चीज़ है वो ब्रॉड डेलाइट में ऑपरेट कर रही है, तो फिर हाउ डू वी से कि एक बच्चा डिग्री पे ध्यान दे या फिर जाकर के वो रूम देखे?
2: बिल्कुल ठीक है आपने. आपका पीजी हवा में तो नहीं लटका हुआ. आपका जो पीजी है दैट इज द रेजिडेंशियल कॉलोनी, उसमें लोग हैं आसपास, उसका RW है, वो बिल्डिंग कैसे बनी, उसमें पीजी कैसे रन करा? आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टूडेंट, आई एम ब्लेमिंग द रेजिडेंट्स ऑफ सत्य निकेतन.
1: सर जब हम अब सवाल पूछ रहे हैं तो व्हाई आर वी बीइंग पुश्ड डाउन?
2: No, you are not being pushed out. I am telling you the dark reality. यहाँ तो आप PG में आ गए, जहाँ से आते हो वहाँ भी यही हाल है.
1: सर तो ये सवाल हम पूछे जाकर के PG owners से, या हम पढ़ाई पे ध्यान दें?
0: One second. Okay, Dr. Nathan, 30 seconds, then Harshvardhan.
3: No, not even 30 seconds. I will give you an analogy. What would you call a hospital that keeps on admitting patients without adequate beds for them? That is exactly what is happening. The universities keep on admitting students without giving them proper accommodation. They are worried how the lady is absolutely right. How can you study when you are given such, to be packed like sardines in an accommodation that is worse than a slum?
0: So, Harshvardhan ji, ye bataiye ki sirf 4% logo ke liye jab hostel hai, to phir college pe college kyun banaye ja rahe hain? Why can't all of them be given hostels or residences as well?
4: पंजाब, मुझे लगता है थोड़ा सा रियलिस्टिक जो अप्रोच है उससे आनंद भी आज मैं उनसे पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ, और विवेक भी वही काम कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बच्चे ही सेल्फिश हो गए, सोसाइटी ही सेल्फिश हो गई,
2: बच्चों के बाप सेल्फिश थे.
4: अरे एक मिनट,
2: जब खड़े होकर के गलत MP MLA कॉर्पोरेटर बिठाओगे सर पे देश के, अजीब से मंत्री बीए पास, तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर है.
4: आपकी समस्या क्या है? आप ये समझते हैं कि किसी भी इशू पर कम्युनिस्टों को कुछ बोलने का, कुछ ऐसा बोलने का मिले जिससे उनको पॉलिटिकली लाभ हो जाए, लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि आप कुछ करते नहीं है. आप कुछ करते नहीं है. मूल मुद्दे पे बात करने दीजिए. जो आनंद कह रहे हैं आइडियल, उसको देखें तो बड़ा अच्छा है. सबको हॉस्टल मिलना चाहिए, सबको गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अप्रूव होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता. और मैं जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे 90 के दशक में, हॉस्टल होते थे, और उसके अलावा जो अलग अलग मोहल्लों में होते थे उनको हम लोग डेलीगेसी कहा करते थे. उनके भी बाकायदा जब वहाँ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते तो डेलीगेसी से भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते, तब वो छात्र संघ बनता था. एक तो देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ नहीं है, या छात्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है. JNUDU में है छात्र संघ, लेकिन छात्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है. वरना सभी छात्र संगठनों को, सभी छात्र संघों को क्या यह पता नहीं है कि इस तरह की बिल्डिंग में बच्चों को ऐसे रहना पड़ा है? नंबर वन. नंबर टू, जो सबसे जरूरी बात है, जैसे हम लोग जो ध्यान में है, एक मंजिल दो मंजिल का बना, उसको ईंट की इमारत बनती थी और उस पर आके लोग रहते थे, बच्चों को सस्ते में मिल जाता था, इसलिए डेलीगेसी में चले जाते थे. यहां भी वही होता है, साउथ कैंपस के नजदीक था वो, लेकिन उसके ऊपर बिना किसी पिलर के 1, 2, 3, 4, 5 और सारी सरकारें बेशर्मी से, बेहयाई से देखती रही. वो कैसा वो MCD का कमिश्नर है जिसको अपने से इस्तीफा देने का मन नहीं हुआ? वो कैसा इंस्पेक्टर है जिसकी हाथ से कलम चली होगी कि नहीं नहीं ये ठीक है? और उससे आगे मैं उसी में एक किसी को सुन रहा था, चूंकि मैं तो वहां गया नहीं, किसी को मैंने सुना कि यहां MCD 15 दिन पहले नोटिस लगा के गई कि ये रहने लायक नहीं है, लिवेबल नहीं. उसके बावजूद वो आदमी जो जिसके ऊपर सीधे सीधे अपराध मामला दर्ज होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का, उस आदमी ने वहां पर लोगों को कमरे किराए पर दे दिए.

0: वी स्टार्टेड एंड यू योरसेल्फ सेड कि हमाम में सब नंगे हैं, सो वी कैन नॉट पॉइंट आउट दैट व्हाई
1: यू हैं नंगे, उनको कॉल आउट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो कपड़े पहनेंगे.
0: दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन नॉट सिंगल आउट एनी पर्टिकुलर पार्टी फॉर दैट.
1: यू शुड सिंगल आउट ऑल
0: ऑफ देम. दैट्स व्हाट माय सबमिशन इज. एंड एन इंसिडेंट लाइक दिस हैड हैपेंड अर्लियर व्हेन दिस इन द कोचिंग क्लास दिस वाटर लॉगिंग.
1: ऑफ कोर्स
0: आई थिंक दैट वाज अ टाइम व्हेन द alarm should have been raised by the CM. What the CM has,
1: but
0: Delhi,
1: was it
0: Delhi
1: raised,
0: CM
1: sir?
0: Had to say.
1: Uske baad kya hua?
0: She is literally rebuking the students for that. She is not ready to take the blame. She is not ready to say that we should have woken up much earlier.
1: Okay, Harshvardhan ji, then Dr. Ranganathan.
2: Vijay ji, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या illegal कब्जा करने वालों के पक्ष में अदालतों में जाने वालों को अदालतों को बर्दाश्त करना चाहिए?
3: इल्लीगल किसे
2: असली
3: कहते?
2: सवाल जो है
3: इल्लीगल किसे कहते?
2: अगर आप इंक्रोचमेंट करेंगे और उसके बाद अदालत जाके वहां से स्टे लेके आ जाएंगे और नेता वहां पहुंच जाएंगे बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, तो जब बच्चों की जान चली जाएगी तब आपको लगेगा यार ये तो इल्लीगल था. आपने अगर झुग्गियों को उनको स्लम को कह दिया कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, दिल्ली की सारी ऐसी कॉलोनी हर जितने शहर है कम से कम अर्बन एरिया को रेगुलराइज करके, और मैं कह रहा हूं अगर 500 गज का उसने लीगल एनक्रोचमेंट कर रखा है, 250 गज को आप
1: अरे वही बुलडोजर्स रन बिलेटेडली
3: पॉलिटिशियन के टूटने के विरोध में हो,
2: पुलिस नहीं जा सकती, और उस इलाके में अगर आप करें तो विकसित भारत ऐसे नहीं बन
1: सकता.
2: फिर करो डिमोलिशन करिए. यूपीए के समय में अगर कोई कानून आ गया रोकने की कोशिश हुई, ये भला नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा.
1: एंड पॉलिटिशियंस गो एंड स्टैंड इन द वे ऑफ बुलडोजर्स.
3: Of course, yes,
1: when
3: we
1: those
3: should.
1: bulldozers we try should. and bring down the illegality, that's the problem.
2: आप ये गरीब,
3: आपका बुलडोजर सिर्फ
2: अरे वो गरीब है, वो गरीब है जिसने 5 मंजिला मकान के बच्चों का खून चूस लिया, बच्चों का खून चूस लिया. आप कैसी बात कर रहे हैं
1: विवेक जी, एक सेकंड,
2: कैसी बात कर रहे हैं? 5 मंजिला की बिल्डिंग रख के बच्चों का खून चूस लिया, आप कह रहे हो गरीब है?
1: ओके, लेट्स नॉट शाउट मिस्टर श्रीवास्तव. आई विल टेल यू, देयर आर कोठीज इन दिल्ली
2: व्हिच आर वैल्यूड
1: ओवर एंड अबव 400 crores.
3: यस, मैं
1: those people have yes. gone and got a stay from court.
3: Yes.
1: ये कोई गरीब नहीं है.
3: जी.
1: They are squatting illegally on land and वहाँ bulldozer चलना चाहिए.
3: मैं सुना
1: तो गरीब पे अमीर पे छोड़िए, bulldozer हर जगह चलना चाहिए.
3: वो नहीं टूटेगा. छतरपुर फार्म्स इल्लीगल एरिया है, वो नहीं टूटेगा. आप ट्रेन लेके, बस लेके, कार लेकर के जाइए छतरपुर से गुड़गांव, नेशनल हाईवे दोनों तरफ एनक्रोचमेंट, बड़े बड़े फैशन के आउटलेट्स, इंटीरियर आउटलेट्स हैं, नहीं टूटेंगे. इनको सिर्फ गरीब की झुग्गी दिखती है. दूसरी बात जब एक आदमी दिल्ली शहर में, एक मिनट
2: देश में हो
1: जाए,
3: ऐसा नहीं है सर. अब आप सुनिए, ये लेबर क्लास में हंसने वाले लोग, असलियत यह है एक गरीब आदमी दिल्ली शहर में
2: आते हैं
3: जब घर बनाता है. एक मिनट, डोंट इंटरप्ट मी,
2: तो ठीक रही है.
3: मैं एक गरीब आदमी दिल्ली शहर में आता है, दिल्ली के नागरिक और बाकी मेट्रोज के नागरिक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं घर बनाना कितना महंगा है. पहले वो बेचारा देखता है यहाँ मैं घर बना सकता हूँ, हाँ या ना. एमसीडीवी वाला आता है, कहता है कोई बात नहीं साहब, थोड़ा पैसा तो बना लो, बाकी उन्हें बना रखा है. वो घर बनाता है, उसके बच्चे पढ़ने लगते हैं, रहने लगते हैं. 10 साल बीतता है, 20 साल बीतता है, 30 साल बीतता है, 40 साल बीतता है, एंड ही स्टेइंग बिकॉज ही वॉज अलाउड टू स्टे.
2: 40 साल से
3: ये सरकार शालीमार बाग को तोड़ती है.
2: पिछले 40 साल से सरकारें ऐसे ही इल्लीगल बस्तियां बसा रही
1: हैं और जिंदगी
2: खतरे में डाल रही हैं.
3: उसको कॉम्पेंसेशन कौन देगा?
1: What
3: जिसका घर आपने बसने दिया फिर तोड़ा.
1: What Vivek Srivastav seems to be suggesting is that in the name of removing illegal construction, the bulldozers will roll selectively over the weak and the poor's houses. The rich and connected will be spared. Dr. Ranganathan.
4: Padmaja, please give me a couple of minutes because you'd asked me to come in 5 minutes ago and this is the reason why Vivek comes to the studio because he can't be faded out. Yahan pe cheekte chillate rehte hain, ab inko fade out.

0: आउट नहीं कर सकते, मेरा टाइम ले रहे हैं। विवेक प्लीज डोंट, विवेक
1: ओके, आई एम कमिंग टू यू नेक्स्ट मिस्टर बंसल।
0: नहीं बोल लो फिर विवेक।
2: अरे मैं नहीं बोल रहा भाई, बंसल साहब दूसरे विवेक बोल रहे
1: हैं। डॉक्टर
2: दो दो विवेक है आपके सामने।
0: व्हाट आई एम गोइंग टू से आउट हियर माइट हर्ट अ फ्यू, बट इट इज एम्बैरेसिंग दैट माय फेलो पैनलिस्ट, ऑल थ्री ऑफ देम आई एम सॉरी टू से, आर सो क्रूअल एंड इरैशनल टूवर्ड्स फेलो इंडियंस। मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी जो रैशनैलिटी और लॉजिक वाली जीन है वो कहाँ चली जाती है। ये क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि भाई जो भी इलीगल बिल्डिंग बनाता है वो नहीं होनी चाहिए, करप्शन हटनी चाहिए। अरे भाई 80% ऑफ दिल्ली इज इलीगल एंड अनप्लान्ड। हर बिल्डिंग को गिराओगे और नहीं बनाओगे तब स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए वो दोगे। यू हैव टू हैव अ सिचुएशन वेयर स्टडिंग हैज टू बी क्लब्ड विद डिग्निटी। स्टब में बैठा है, टॉयलेट नहीं है, एक बिस्तर नहीं है उसके पास, और कह रही कि वो पढ़ लेगा।
2: I have a strong objections to what you were saying that the all three panelists. Solution is to be multi-pronged. When you say punishment is to be deterrent, when we say that there has to be some regulatory,
1: I'm coming to you, Dr. Ranganathan.
2: There has to be some regulatory body which goes into the whenever renovation takes, whenever it has to retrofitment of any building takes place, there has to be, it is to be sanctioned by a structured body or get some permission from the engineer or something of this sort. Has to be regulatory body, has to be there.
1: So let me ask you this, Mr. Bansal, there has to be some क्या मतलब है अभी तक बनाया क्यों नहीं रेगुलेटरी बॉडी?
2: There are so many things which have started.
1: वो क्यों नहीं आया इतने सालों से? 50 साल से सत्यनिकेतन में वो बिल्डिंग खड़ी कैसे रह गई? There has to be some का क्या मतलब है?
2: Everybody has to take the blame. That is there.
1: Sir, I am not here to look for who to blame. I am here to look for solutions.
2: I am suggesting the solution. You only got back to the fact that they are existing for last 50 years.
1: Let me give you a solution. पहले माइक पे तो बोलो
2: आप। मैं माइक पे ही बोल रहा हूँ। आप बोल लेते हैं। This is what I am saying. It is to be, you know, the government is responsible. Some regulatory body like this building had come up and this was not being demolished. Some vigilance on the part of the residents as well, neighborhood residents as well. It is to be
0: a
1: universe. 30 seconds, yes.
0: You know, 30 seconds? मेरे को 5 मिनट पहले आपने पद्मजा, यू आर रनिंग योर संसद जस्ट लाइक दीज गाइज रन देयर संसद।
1: ओके, 2 मिनट्स, डॉक्टर रंगनाथन, गो ऑन। यस,
0: आई थॉट एटलीस्ट योर संसद वुड बी बेटर एंड मोर सिविलाइज्ड। अलास, इट इज नॉट। ये तीनों के तीनों एक सोल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। ये जो मिस्टर बंसल है, इनके सारे कांग्रेसी नेता इंक्लूड
2: प्रॉब्लम, इट नीड्स टू बी टैकल्ड इन अ वेरी वेरी
0: सीरियस प्रॉब्लम फॉर 40 years. यू डिड नथिंग अबाउट इट। व्हाई यू कीप ऑन सेइंग सीरियस अ प्रॉब्लम? यू आर कॉम्प्लिसिट इन इट।
2: दिस प्रॉब्लम इज बीइंग हाइलाइटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। This problem is being highlighted at this. It has come to the notice. Has NDTV at any point of time prior to this has held a debate?
1: Yes.
2: So has on this?
1: The answer to this, answer to that is yes. Give him 2 minutes without interruption, because all three of you are in the studio. He's not. Go on, Dr. Ranganathan, make your point.
0: Is there somebody who is speaking for the students?
1: Yes.
0: वो 2 लाख रुपया फीस दे रहे हैं और आप उनको 5,000 के अकोमोडेशन नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आपको पार्लियामेंट में कहना है कि हमने 10,000 स्टूडेंट्स और एजुकेट कर दिए, 20,000 और चुके। शर्म की बात है, ये तीनों की तीनों जो वहां बैठे हैं स्टूडेंट्स का एक भी नहीं सोच रहा। द यूनिवर्सिटी विल बी पेइंग अ पिटेंस इफ इट गारंटीज एटलीस्ट 1 accommodation फॉर द स्टूडेंट्स।
2: हु कम आउट ऑफ द विलेज, अ स्टूडेंट हु कम विद बेयर मिनिमम मनी, ही कम्स टू द बिग सिटी,
0: उसे
2: भेटा
0: घुसा लो।
2: दैट that's what I wanted to hear from you, gentlemen.
1: You know, it is very easy, Mr. Bansal. Let's take two.
2: Abject poverty of this
1: let's
2: country.
1: Take two for a second, and it's very easy to say, let's not get politics into it. The ugly truth is that had it not been for politics, this mess would not have proliferated around us. It is exactly because of politics that things have gone from bad to worse to absolutely abysmal. Yes, go on, young lady. I will say sab log mile hue nahi hai. They have different corners that they are occupying.
3: Sab mile.
1: Go on. Let this young lady speak. Yes, go on.
2: At any point of time you felt that I was trying to politicize or I was in cahoot with them or I was not coming
1: Mr. Bansal, this is not about you. Yes, go on.
4: Sir, Dr. Anand, you made a statement that we should come to solution and you gave a solution that you should provide accommodation for every student. Do you think it's structurally possible to do?
3: Yes. Absolutely.
4: How? I want a solution from you. And second of all, I want to ask that DU ke campuses itne bade hote hain, why don't we have hostels and staff accommodation there?
1: Okay. First answer, Dr. Ranganathan, how is it possible to provide accommodation to such a huge number of students?
0: Now, one second, please remember, they have made this number a huge number precisely because they don't care about the accommodation. They are not teaching the students with any dignity. The students are staying in a slum with two bricks as a toilet and they are saying, ki padlo, likhlo. Of course it is possible, of course it is feasible. When you're charging 20,000 rupees per month to a student, do you think you cannot have a proper one room, accessible, safe and very clear accommodation for them?
4: But how do you think it will happen? Like, how do you think we'll go about the process? How will we make feasible for every student?
1: There are 2.5 lakh regular students.
4: I want the answer.
1: Yeah. Only 7,000 hostel seats. 2.5 lakh students who come into Delhi.
2: Make Mr.
1: But how do I give them 2.5 lakh houses?
2: Education minister.
1: Who will make 2.5 lakh houses?
5: अरे World Bank से पैसा लो अपने businessman दोस्तों को दो वो बनवाएंगे आधा वो आधा BJP
1: की. Sir, let's not make it frivolous if we are actually looking for solutions. No, it is not frivolous.
5: This is becoming frivolous now.
1: It doesn't need to be frivolous.
5: एक गरीब मुल्क में आप कह रहे हैं सबको hostel दो.
1: Okay, 10 seconds, Dr. Ranganathan. I really want to bring in students. 10 seconds, go on.
0: This is why this country has gone to the dogs. पहले problem खड़ी कर दी. इतनी बड़ी हो गई फिर कह रहे हैं इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. Shame on you.
5: The fact of the matter is, you talk of the economics. Calculate the money and tell me.
2: And really, I would say that.
6: My deep condolence to the family who lost their Zim. मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक प्रथा चलती थी जहाँ पे हम बलि दिया करते थे जानवरों की और फल फूल की कुछ भी नया काम कुछ भी सुधार लाने से पहले. वही हमारे देश में आज हो रहा है. हम बच्चे को बलि चढ़ाया जाता है मरते हैं उसके बाद फिर समाधान खोजने हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए आते हैं और समाधान में क्या आता है बुलडोजर चलाना. बुलडोजर चलाने से इमारतें गिर सकती हैं लेकिन उन गुनहगारों को कौन उनसे जवाब पूछेगा मेरा ये क्वेश्चन है. और मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लेके मौजूद नहीं हूँ मैं यहाँ सॉल्यूशन भी लेके उपलब्ध हूँ. मेरा सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को एक ऐप बनाना चाहिए जिसमें पीजी ओनर और स्टूडेंट दोनों रहें और उसमें ये बताया जाए कि कौन सा पीजी इलीगल है कौन सा लीगल है किस पीजी को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है कौन से पीजी में अच्छा पानी आता है क्योंकि दिल्ली में हम क्लोरिनेटेड वाटर पीते हैं. दिल्ली से जब हम अपने घर से आते हैं तो बाल लेके आते हैं दिल्ली में रहते हैं तो बाल झड़ जाते हैं.
1: तो आप कह रहे हैं कि इसका रेगुलेशन होना चाहिए और इसको एक जगह पे इट शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज दिस इंफॉर्मेशन. नाउ इंसिडेंटली अ बिगिनिंग एटलीस्ट वी आर टोल्ड दैट अ बिगिनिंग फॉर दैट हैज बीन मेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द पीजी रेगुलेशन लॉ. Imagine, and I agree with this young man. You know, he said that first you have to have a series of these tragedies for somebody to wake up and say, oh, we need to have a regulation law. Imagine all of this while, why wasn't this regulation done? Has anyone thought about it? Has anyone asked that question? What are the proposed provisions now the proposal is being made? A mandatory PG registration within 90 days, a unique registration number for every PG. Delhi police and MCD clearance is going to be mandatory. Imagine, this clearance wasn't even mandatory all of this while. A GOV PG portal for verified listing of PGs, exactly what this young man is talking about. CCTV coverage at entrances, common areas, licensed night guard for PGs with 15 plus students, area-wise rent bands to be set by a panel. So there is going to be regulation of how much rent should be charged, 30-day written notice before eviction, and strict action on non-compliant PGs. And that's why I asked Harshvardhan ji. Ab sochiye ye ladka yahan par bol raha hai ki hume ek app karna chahiye. अब जाकर के एलजी ने मीटिंग की और उन्होंने कहा अरे हमें एक पोर्टल करना चाहिए. इतने सालों से ये पोर्टल तो हो जाना चाहिए था ना.
7: पद्मजा, जितने इसमें प्रपोज सजेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब इन प्लेस हैं. एमसीडी एक ईंट रख के देखिए, आपको बताएगी कि एमसीडी होने का मतलब क्या होता है. और कोई कहेगा कि वहां के कॉरपोरेटर को पता नहीं होगा. और हमारे ये नौजवान साथी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन बुलडोजर किस संदर्भ में आप देख रहे हैं. अगर आपको रेगुलेशन करना है, कोई इलीगल स्ट्रक्चर है, तो उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर ही लगेगा. सवाल यहां यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि जो इलीगल ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, उनको हम तोड़ें तो फिर. और दूसरा, वो कोई बगल का पड़ोसी नहीं करेगा, वो झगड़े करने के लिए नहीं आएगा. वहां के लिए बाकायदा अथॉरिटी है, उनके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना, वो काम नहीं कर रहा. और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो उस इलाके में जितनी इलीगल बिल्डिंग है एक बार टूटनी चाहिए. वो सालों से बच्चों से खून चूस रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सेफ स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे. और मैं एक बात कहता हूं जो थोड़ा समझ में आए, दिल्ली में इतने लोग रहते हैं. आनंद को शायद, चूंकि प्रोफेसर साहब है, लंबे समय से मुझे भी मिला हुआ बता दिए, तो मैं तो सोल्यूशन ही दिया, वो शायद उस तरह से पढ़े नहीं है. हम जो डेलीगेसी की बात करते हैं, हमारा इलाहाबाद में घर था, हम थोड़ी ना हॉस्टल लेंगे. हम अगर उतने एकोमोडेशन जो दिया जाता है, वो किसी भी आइडियल से आइडियल कंडीशन, वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता कि सारे के सारे हॉस्टल में रहेंगे. जेएनयू के बगल में पूरा मुनीर का गांव है जो बसा हुआ है, जिसमें सब बच्चे रहते हैं. डीयू तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, अगर वो कॉलेज बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, हम एक ना गाड़ी के आगे काट रख देंगे, ना ना हॉस्टल नहीं बनेगा तो पढ़ने नहीं देंगे. ये तो रिग्रेसिव हो जाएगा ना. जरा ये भी सोचना चाहिए, बिल्कुल उसको रेगुलराइज करिए, अच्छे से अच्छा उसको डिग्निटी दीजिए स्टूडेंट को. लेकिन ये कहना कि ना हॉस्टल नहीं होगा तो सब बंद कर दो, ये आंकड़ों की ये ठीक नहीं.
1: यू हर्ड प्लेंटी ऑफ स्टोरीज ऑन सत्यनिकेतन. देयर आर मोर स्टूडेंट्स हियर हु लिव इन हॉस्टल्स. आई वांट टू गेट अ फ्यू ऑफ देयर स्टोरीज इन जस्ट अ सेकंड. आप पीजी में रहते हैं? कहाँ है आपका पीजी और किस तरीके का है बताइए.
8: जीटीबी मेट्रो में है, लाइक नॉर्थ कैंपस के पास में. सर, जब मैं दिल्ली में आया था, तो आई कम फ्रॉम उड़ीसा, तो स्टार्टिंग में मुझे पीजी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ था. मतलब पीजी क्या, आई अप्लाइड फॉर हॉस्टल, 2-3 महीने तक हॉस्टल पे कुछ अपडेट्स नहीं आती. तो सर, ऑल दो मेरे रिलेटिव्स रहते थे, तो मैं उनके घर में 2-3 मंथ रुक गया था, तो इट वॉज फाइन फॉर मी. पीजी सर, आप देखने जाएंगे, आप देखेंगे हर जगह का अपना अलग अलग रेट है. मैं साइड वाले पीजी में देखूंगा, उसमें पहले 7 दिन अच्छा खाना दे देंगे, फिर खाने का क्वालिटी बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा. सर, आई गो टू एरिया जहाँ पे मेरे दोस्त लोग रहते हैं, जैसे देर इज मलकागंज वगैरह, वहाँ पर देखेंगे सर, मतलब एक घर के ऊपर उन्होंने पूरा जैसे मॉन्यूमेंट जैसा पूरा खड़ा कर दिया, मतलब जस्ट टू पुट, मतलब और बच्चे उसमें रहे. तो सर, ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड सर, मतलब ये बिल के
7: रेगुलेशन जरूरी है.
1: कितना कितना पैसा देते हैं आप हर महीने?
8: सर, इट इज 15,000.
1: 15,000?
8: यस मैम.
1: एंड प्लस यू पे एक्स्ट्रा फॉर फूड आल्सो?
8: मैम, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल.
1: Extra electricity bill. So you end up paying about 15 to 20,000.
8: 18 to 20 is the
1: और घर के मुकाबले आपको PG उतना ही बड़ा है जितना घर में कमरा हुआ करता था.
8: मैम, इट इज लाइक
7: वन बेड होती है, वहाँ कमरे नहीं.
8: यस मैम,
7: वो तो बेड होती है आपकी, 2-3-4 ऐसे ही होता है.
8: यस मैम,
1: तो यानी कि
7: सिंगल ले रहे हैं तो
1: बेड का 15,000 रुपए दे रहे हो.
8: यस मैम,
1: यानी घर पे अपना खुद का कमरा था, यहाँ एक बेड में रह रहे हैं 15,000.
8: मैम, टू बी ऑनेस्ट, आपको उड़ीसा में उससे बड़ा घर मिल जाएगा एट द हाफ द रेट. मतलब लाइक यू विल गेट 2 to 3 BHK, मतलब 15-20,000 में, लाइक द होल house itself.
9: You get the food along with it?
8: Yes sir.
1: 15 to 20,000 this boy would have got on rent in his house. Yes, Dr. Ranganathan, go on.
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं हर्षवर्धन जी मेरे मित्र ही नहीं, मेरे भाई हैं, कि ये सारे इंडियंस, मैं दोबारा कह रहा हूं, लॉजिक और रैशनैलिटी कहां चली जाती है. आप सिर्फ बिल्डिंग की सेफ्टी की जरूरत नहीं है, एक काल कोठड़ी भी सेफ हो सकती है. टॉयलेट अगर 100 लोग सेफ यूज कर रहे हैं, उसको भी आप सेफ कह सकते हैं. वेर इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन?
7: ऐसा मैंने कहा नहीं.
0: आई कैन नॉट, हर्षवर्धन जी ये बहुत, आप ऐसे नहीं थे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर हैज टू बी एजुकेशन हैज टू बी डिसेमिनेटेड विद डिग्निटी. Even if you are staying in a safe building, it is not dignified for us 10 students to be sharing one tiny cubicle room.
1: I think
0: and
1: can we...
0: without any food, without any dignity, ye samajh mein kyun nahi aa raha?
1: So Anand, I think...
7: I am saying the same thing. Main bhi itni der se wahi keh raha hu.
1: Anand, I think we are all agreeing on this, but how do we arrive at that?
7: Vivek se mila hua to mat kahiye, ye zyada...
0: You are not, because you are not putting universities on the dock there. What do you mean by you are agreeing to it? You are not agreeing to it.
10: it.
11: Universities can buy a building.
10: In that case,
12: we should subsidize
10: of this country.
12: We should subsidize. Which means, अगर आप ये गारंटी कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी गारंटी करेगी, यू मस्ट, वी आर गोइंग टू गिव एन अकोमोडेशन, टेक इट, दे माइट मेक इट एक्सपेंसिव, विल द गवर्नमेंट सब्सिडाइज इट?

0: फॉर द स्टूडेंट, सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा स्टूडेंट को।
1: यूनिवर्सिटी
0: या कम्युनिस्ट है, हम तो कहेंगे सब्सिडाइज करो और बच्चे की कस्ते।
2: ओके, आई वांट टू गेट अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स। यस, गो ऑन मैम।
3: यस सर, I'm just very curious to know that why are local banks and the insurance companies still financing and insuring the buildings that are not legal and they are not approved by MCD approval plans too?
4: आपको सिर्फ मैं जानकारी के लिए बताता हूँ, इनमें से किसी को बैंक फाइनेंस की जरूरत नहीं।
2: पूरा इलीगली बनती
4: है। नाम पर जमीन ली है, एक कमरा बनाया, पांच कमरा बनाया, उसके पैसे से दो कमरा बनाया, फिर चार कमरे बनाए और तीन मंजिल की इजाजत पर पांच मंजिल। सीधे सीधे करप्शन। ये जो अथॉरिटी है उसका अपना काम ना करना, सीधे सीधे उसका मसला है और कुछ है।
0: दिस इज लालडोरा और विलेज और या रीसेटलमेंट कॉलोनीज में बनते हैं, इनकी रजिस्ट्री नहीं होती, इस पे बैंक फाइनेंस नहीं होता, इस पे पावर ऑफ अटॉर्नी से वो आपके नाम पे ट्रांसफर करेगा। अभी सरकार ने उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस लाई है, व्हिच आई फील वाज द गुड
2: लाइक व्हाट हैपेंड इन सत्यनिकेतन। दिस वाज अ जेजे कॉलोनी एंड इट वाज मेंट टू हैव ग्राउंड प्लस टू, बट व्हेन नोबडी वाज लुकिंग ऑन व्हेयर एवरीवन वाज लुकिंग इन अ जेजे कॉलोनी यू हैव 5-6 स्टोरीज बीइंग बिल्ट, सो नोबडी टेक्स अ लोन, इट जस्ट गेट्स बिल्ट। यस, गो ऑन।
5: टॉकिंग अबाउट एमसीडी ऑफिशियल्स, देयर आर टू एमसीडी ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ रिपोर्ट, दे वर आल्सो इन्वॉल्वड इन द मालवीय नगर फायर।
0: यस,
5: एंड दे आर नाउ सस्पेंडेड, जस्ट सस्पेंडेड। व्हाई वाजंट एनी एक्शन टेकन व्हेन द फायर इंसिडेंट हैपेंड?
0: सो दैट इज
5: आर वी वेटिंग फॉर न्यू इंसिडेंट्स टू
0: आई बिलीव आपकी गलती है, मैं इसलिए कह रहा था दैट वी मस्ट पुट द प्रेशर ऑन एवरी गवर्नमेंट व्हाट एवर बी द पार्टी। और ये एडवोकेट साहब बैठे हैं, हमें कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए, हमें पार्टीज पे प्रेशर डालना चाहिए, हर स्टेट के अंदर कानून बनाओ, अगर ऐसा हादसा होगा उसको बनाने वाला वो, उसको साइन करके अथोराइज करने वाला वो एमसीडी का अफसर, चाहे रिटायर होकर घर में बैठा हो, उसको पकड़ो और जेल में डालो। टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, दैट इज मिसिंग इन दिस नेशन। ये पैसे और कंपल्सरी करने से हॉस्टल को कुछ नहीं होगा, इनको डंडे मारो तब सुधरेगा ये मुल्क। और उसके लिए आपको, जनता को, आप जेंजी हैं, हम नहीं कर पाए, हम फेल हो गए, आप हमारी तरह फेल ना हो, आप खड़े होकर के अपने वोट की ताकत को एक्सरसाइज करो, सरकारें सही बनाओ, उनसे काम करवाओ।
2: एट द वेरी लीस्ट मिस्टर बंसल, कैन वी बी अश्योर्ड दैट द नेक्स्ट टाइम, इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ डिसाइडेड टू स्टेप इन एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज बिल्डिंग्स मशरूमिंग बट ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ पीजीज, नो गवर्नमेंट, नो पोलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू जम्प इन। You know, you had earlier Arvind Kejriwal, a very famous statement of his, where he said कि अरे अब बुलडोजर क्यों चल रहा है, बेचारे गरीब लोग किधर जाएंगे। The fact is that when these illegal structures are removed, there will be about 80 to 85,000 people who will be affected. So no political party should jump in and say, oh, you know, my voters, now let me go and stand with them.
6: Madamja, once an atmosphere is, political atmosphere and social atmosphere is built up, a narrative is created like this, no political party would dare to enter into this. Yeah, I'm telling you.
2: So you're putting the onus on the people ki aap mahol banao.
6: No, I'm not putting the onus on the people.
2: Then the politicians are going to come to heel.
6: Onus on everybody, political parties as well. They have to take the lead. I'm not saying, please, you are always constantly misunderstanding.
1: But have they taken the lead? They haven't. Why would
6: they? I'm saying that definitely Gen Z, what they did in Jantar Bantar, they were able to build, you know, even Supreme Court was compelled to take back the cases.
0: Yes.
6: That's what I'm coming to.
4: Desh mein danga karke, anarchy karke aur cases wapas lena, usko hum Gen Z power kehte hain. So sorry, ye andolan nahi hai.
0: Andolan.
4: Ye bahut kharab disha mein hum log ja rahe hain, isko nahi samajh mein aa raha. Aap us serious issue ko kyun usse compare kar rahe hain?
2: This has to be done through law.
0: Yes.
2: And this has to be done legally. Not saying that Gen Z should now sit at Jantar Bantar and make the Cokes Act. No.
6: An example that once a political and social atmosphere is built up against a particular thing, political parties are compelled to initiate on that.
2: But that is not the solution. Yes.
7: Just hear me out. Sir, I think hum thoda issue confuse kar rahe hain. There are residential properties and there are commercial properties.
0: Yes.
7: Padmaja ji ne bola abhi ki ye 40 saal se property khadi hui hai. क्या अगल बगल वालों को नहीं दिखा कि ये 40 साल से प्रॉपर्टी खड़ी हुई है? इनफैक्ट आई वुड रेजोनेट विद द कमेंट्स दैट हैव बीन मेड बाय मिस्टर विवेक कि अगल बगल वालों को ही एक्शन लेना चाहिए भाई. इफ समबडी यू शुड अ पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल शुड गो टू द कोर्ट.
4: यू
7: शुड गो टू द कोर्ट.
4: बगल का आर्मी कंप्लेंट करके झगड़े करेगा. एमसीडी का ऑफिसर पुलिस वाले जल बोर्ड वाले इलेक्ट्रिसिटी वाले वो किस लिए
0: पुलिस कहती है
4: बगल वाला क्यों कंप्लेंट करेगा.
2: वेरी नोबल सेंटिमेंट but yes. in real life the onus should be on the government, the corporation and the owner of the building, not on the poor neighbor. Not the neighbor is going to be put in the dock ki tumne kyun nahi bataya ki bhaiya illegal
4: chal raha hai. I am not saying that the neighbor ki panch mandal ki hai, any public mandal ki hai, wo kya batayega
7: that something wrong is happening. Can go to the court.
2: He should go to the court. He is
0: talking of a jagruk samaj.
7: Yes,
2: no, pehle jagruk sarkar karo sir. Samaj ki apni
4: mushkile to usko yaad nahi pa raha. Wo chahe ek aur mushkil lega.
2: सर
3: मेरा सीधा सा ये सवाल है कि हम ये चीज़ें पहुँचाए प्रोटेस्ट तक भी क्यों पहुँचा रहे हैं. हम क्या जेंजी का वेट कर रहे हैं कि कब वो प्रोटेस्ट करेंगे, कब ये सब दंगे होंगे और उसके बाद हम कुछ करेंगे. अगर अगर पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहे होते तो ये नौबत ही नहीं आती प्रोटेस्ट करने की.
0: इस मुल्क ने और मेरी ये वो तो बहुत बुजुर्ग हैं, 80+ के हो चुके आनंद रंगनाथन, मैं तो अभी जेंजी अपने को मानता हूँ. तो अगर इन्होंने करना होता इस जनरेशन ने कर चुके होते. फेल्ड जनरेशन है और हमने अपने मुल्क को कगार पे ला करके हर सब बर्बाद किया है हमने.
2: विवेक जी जो फेल
0: जनरेशन से उम्मीद है आपकी जनरेशन से उम्मीद है.
4: डिस्क्लेमर
0: मिस्टर मोदी सब बर्बाद किया है.
4: हम नहीं, हम सक्सेसफुल.
2: एंड इट्स वेरी इजी टू से फेल जनरेशन. सर दिस जनरेशन हैज सीन
0: बड़े सक्सेसफुल है.
2: दिस जनरेशन
0: रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है दिल्ली शहर.
2: ओके दिस जनरेशन हैज
0: दिस बड़े सक्सेसफुल है.
2: यस सो दिस जनरेशन हैज सीन मल्टीपल पार्टीज व्हिच हैव बीन इन गवर्नमेंट
0: ऑल पार्टीज कुछ भी हो आप भविष्य है खड़े होइए देश के लिए. और जो ना सुने पॉलिटिकल पार्टी उतार के फेंकिए.
2: ओके वेरी क्विक
0: नहीं कर पाए आप करिए.
2: आई वांट टू गेट मोर पीपल टू स्पीक अप. बताइए
8: मेरा ये कहना है आप लोगों को शर्म आती है पहले बताइए.
0: मुझे आती है.
8: आती है तो ये बताइए आप कह रहे हैं एमसीडी ने नहीं ये नहीं किया या उसने नहीं किया. लेकिन आप अगर आपका बच्चा होता आप उसको पहले से पता होता उसको प्रॉब्लम हो रही है आप कंप्लेन करते. मान लीजिए आप कंप्लेन भी करते तो क्या आपका रिस्पॉन्स क्या लोग आपके साथ कॉर्पोरेट करते नहीं करते. लेकिन सब यूनिटी से करते हैं तभी वो कॉर्पोरेट
0: होते. बिल्कुल सही कहा. शर्म आती है या नहीं
4: सबको शर्म के चक्कर में आपकी बेशर्मी को सब पे क्यों डाल दिया.
8: आप लोग
4: कहा नहीं था हमने तो कहा नहीं
8: हमें प्रॉब्लम हो रही.
4: ये तुमने शर्म के चक्कर में इन्होंने ये कहा इनकी बात को तुमने सबको शर्म से जोड़ दिया. बोलने से पहले सोचना चाहिए ना यूथ को और सोचना चाहिए.
2: अरे सर आप माइक पे तो बोलिए.
0: हम बेटा तीनों चारों समेत इस दुनिया में जितने मिडिल एज बैठे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर उनमें से किसी को शर्म नहीं आती. किसी को शर्म नहीं आती. हमने तुम्हें खराब भविष्य दिया है. हमने तुम्हें डोनेशन वाले कॉलेज दिए.
8: जब प्रॉब्लम हो जाती है तब आप सॉल्यूशन बताते हैं. जब प्रॉब्लम हो जाती है तभी आप सॉल्यूशन बताते हैं. क्या उससे पहले प्रॉब्लम नहीं हुई. अभी कोटा में बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है
4: वो भले आइडियल सजेशन हो प्रैक्टिकली लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो लेकिन ये हर कोई चाहता है. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको हॉस्टल के साथ एकोमोडेशन अगर रूल्स रेगुलेशन होते तो हम आज इसकी बात नहीं कर रहे थे. उनको कोई बहुत अच्छा सा घर और अपने घर में हम जैसे कमरों में रहते हैं वैसे तो हॉस्टल में भी नहीं मिलते. हॉस्टल में दो बेड होती है. मैं तो हॉस्टल भी जानता हूं डेलीगेसी भी जानता हूं. असली चीज क्या है आपको ढंग की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ढंग की लोकेलिटी में ढंग का कमरा पढ़ने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये असली इशू है.
2: एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट वी कैन गो अराउंड इन एवरी डायरेक्शन डॉक्टर रंगनाथन बट द फैक्ट इज इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन regulation and enforcement regulation and then we go on to the next step where everyone should be provided government accommodation if possible. Dr. Ranganathan
9: Padmaja, I want to pass a privilege motion against your Sansad because mere ko sabse kam time mila hai. Dekhiye what again you are also falling into the trap that has been set by these three panelists out here. Ki we should follow regulation. We should have this. Are bhai 40 saal se to tha na aapke paas sari multiple sarkare. Kar liye
0: the usme 40 saal mein.
9: Aap logon ko pakad liya aapne.
0: Aap bhi 40 saal mein the isi desh mein sir. अरे विवेक जी के पार्ट है सर
2: इसीलिए मैं आपको माइक नहीं देती हूँ. नीचे कर लो ना थोड़ी देर. जब माइक होता है माइक में बोलते नहीं हो. जब माइक मिलता है तो चिल्लाते हो. बोलो. हाँ
9: पद्मजा जी, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ इसलिए पाया क्योंकि मेरे को हॉस्टल दिया सरकार ने। ये विवेक जी डफली स्टडीज डफली ऑनर्स पता नहीं कहाँ से पढ़ा, हो सकता है इसलिए ये पढ़ नहीं पाए क्योंकि ये सड़क पे थे या कहीं पे भी थे, डंजन में थे। पॉइंट इज एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए डिग्निफाइड वे ऑफ एजुकेटिंग। अगर वो हम नहीं करेंगे तो जो उड़ीसा से आए आप उनको एक बार दोबारा लाइए, माइक दीजिए उनको, वो 20,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, ना उनको खाना मिल रहा है, 10 लोगों के साथ रह रहे हैं, ना टॉयलेट मिल रहा है, क्या ये डिग्निटी एजुकेशन की? अपने बच्चों को तो पढ़ा लिया और अपने सारे नेताओं दोस्तों को इलीगली सैनिक फार्म में रखा हुआ है, कह रहे हैं कि नहीं हम ढोएंगे इलीगल स्ट्रक्चर। बंसल अभी तक ढोया आपने? अभी तक इलीगल स्ट्रक्चर मनीष शंकर अय्यर जी को वहां से ट्रांसफर करवाइए।
6: पहले नहीं सुनिए,
2: सो लेट मी आस्क दिस, लेट मी आस्क दिस यंग मैन, लेट मी आस्क दिस यंग मैन, व्हाट डू यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर? टुडे यू आर लिविंग इन दिल्ली पेइंग 20,000, टेल मी व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू बी डन ओवर द next few months?
7: Ma'am, first of all, I would expect a long-term plan because, ma'am, plans bana liye jate hain, but in pe kaam nahi hota hai. Even, ma'am, people bhi bahut ignorant hai hamare society mein. Wo log dhyan nahi denge. Unko tab pata chalega jab, ma'am, like, jab mohalle mein chori hoti hai, tab hum log matlab satark hote hain.
2: Correct.
7: Tab wahi wala hai, ma'am. It should be a two-way process. Hum khali government se sab kuch expect nahi kar sakte. And on the other hand, hum log ye nahi bol sakte ki matlab sab kuch government karegi. Hume apne side se bhi karna chahiye.
2: Okay.
7: Ma'am, protest is not the only way. Ma'am, kyunki protest se kya hoga? Ma'am, it will be 1 month. के बाद क्या है? अभी हम बात भी नहीं करेंगे।
2: The government needs to get its fundamentals right and not wait for somebody to hit the street only in order for the government to do their job. That is not the way democracy functions. Yes, go on, young lady.
10: As you all are focusing more on how Gen Z should bring all these matter to limelight, do you think that every other month the Gen Z has to come on the roads to bring these topics on the limelight?
2: Exactly. Just yahan ko padhne aayenge ya fir aapke liye jantar mantar pe baithe rahenge?
6: Suggesting this.
2: Go on.
11: Sir, matlab har bar systemic failure ka matlab bacche hi kyun hote hain? Matlab bas main yahi puchna chahta hu. Har bar matlab koi bada incident hoga aur bacche jab marenge tabhi wo systemic failure ke baad hi wo resolve honge, matlab cheeze.
4: Okay. ये मुझे लगता है ना कि कई बार हम लोग किसी बात की, चूंकि बच्चों की बहुत सी बात हो रही है, छात्रों की, मुंबई की चौल में सामान्य आदमी गिर के बिल्डिंग मर जा रहा है, दिल्ली में बिल्डिंग्स गिरती हैं, जो लेबर फोर्स होती है, जो लेबर आ रहा होता है वो मर जा रहा होता है, ये सबकी लाइफ और सबकी डिग्निटी का सवाल है।
2: yes.
4: हम लोग इस बहाने ये बात कर रहे हैं चूंकि बच्चे हैं इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि इस वक्त ये बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरी बिल्डिंग जो है वो सेफ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ब्रॉडर इस इशू को देखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि आपकी बिल्डिंग्स है। और मैंने तो बहुत बड़ी बात कही, विकसित भारत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो इस देश में कोई भी बिल्डिंग इस तरह से नहीं गिरनी चाहिए। एक लाइन की बात है, उसमें बच्चे, बड़े, लेबर, कोई बड़ा अधिकारी, इसका कोई मतलब
2: नहीं। And I think there is one thing that everyone sitting here agrees upon. People have the right to live with dignity, irrespective of whether you are Gen Z or whether you are 100 years old, whether you're living in a hostel or a PG or in your own house. But how do you make that happen? Should it require for somebody to hit the streets, to go to Jantar Mantar, to start an agitation, to go to court, or to just expect that the government, the representatives that we vote in, are simply doing their job? And that is possible only when they are held accountable day on day. It's not enough to make reels and say that we are clocking it. It is important that if you really want to understand the grammar of Gen Z, you make sure that this Gen Z is alive, safe, and studying with dignity. Thanks very much to this wonderful group of people who have joined us here and to our experts. And a very angry Professor Ranganathan. Hopefully, we will see these reforms happen sooner rather than later. Thanks very much for joining us on People's Sansad. Because remember, when it really matters, the buck stops here. Thanks for watching. Thank you.

0: Welcome back. In other news, there's been big shake-up in the BSP, with Mayawati now cutting ties with her nephew, Akash Anand. The BSP chief says that Akash put personal and family interests ahead of the party and the movement, even prioritizing his father-in-law, Ashok Siddharth's political career over his own. Mayawati also hit out at Akash for not reposting BSP posts, calling him double-minded about the party's growth. This comes after Siddharth announced his retirement from politics, a move Mayawati called too late. Akash, once projected as Mayawati's successor, has now been completely freed from the BSP after a series of removals and reinstatements over the past 2 years.
1: अंबेडकर और कांसी राम के सपने अधूरे हम सब लोग मिलकर करेंगे पूरे और उनको निर्णय लेना चाहिए क्योंकि कोई मिशनरी आदमी कभी संन्यास नहीं लेता वो अपने उपेक्षित समुदाय जो 5000 वर्ष से सदियों से सताए गए लोग हैं उनके हक अधिकार की लड़ाई 80 करोड़ जो अनाज पर निर्भर है ऐसे लोगों को विकास की धारा मिला आए और निर्बलों को खड़ा करके दिखाएं क्योंकि ये पार्टी हमारी नहीं है ये पार्टी निर्बलों की पार्टी ये नहीं है कांसी राम के मिशन की पार्टी है इसलिए जो भी कांसी राम अम्बेडकर के मिशन वाले हैं वो सब आए और एक साथ मिलकर ऐसी ताकतें जो आज के दिन में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट जिस तरीके से भ्रम पैदा किया जाता है इसको खत्म करके दे
2: बहुजन सर्वजन हिताय बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। अब आकाश आनंद से इनको इतनी परेशानी है तो 3 बार उसको निकाल चुकी है और 3 बार पार्टी में वापस ले चुकी है। आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए, फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा।
0: And with that, we slip into a very short break. That's all from my side. Good night. See you tomorrow.
3: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
4: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
5: But I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
6: Marne se bada kya hoga?
5: As a journalist, I can say you're not alone.
4: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
7: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
8: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
9: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
10: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
11: A very good morning to you all at the NDTV Anviksha.
12: Nepalese women are incredible entrepreneurs, and I can see a lot of women entrepreneurs here.